FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है शुक्रवार, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को ही कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: The discussions also.
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: Can enter the Venezuelan market successfully.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा

से प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वंदनवार से पहले चिंतन। आज का चिंतन है, जिंदगी का सबसे बेहतरीन उसूल है हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान कई परेशानियों की सबसे अच्छी दवा है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 6:30 होने को हैं। झोरोखा में अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के कार्यक्रमों की।

ये वो कार्यक्रम है जो आकाशवाणी चंडीगढ़ से आपके लिए दिन भर प्रसारित किए जाएंगे। सुबह 9:30 पर आज का अखबार कार्यक्रम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स।

विश्व पर्यावरण दिवस है आज, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस मौके पर 10:05 पर फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में टॉपिक रहेगा, जब तक पेड़ पौधे वन हैं तभी तक स्वस्थ हम हैं। इस विषय पर आपके विचार जानने के हम इच्छुक रहेंगे 10:05 पर प्रोग्राम, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।

स्पॉन्सर प्रोग्राम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे दिन में 11 बजे और 11:15 पर लाइव फरमाइशी कार्यक्रम होगा। म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। इंस्टाग्राम पर भेजी गई आपकी फरमाइश इस प्रोग्राम में पूरी की जाती है। 10 बजे के बाद आप अपनी फरमाइश हमारे पेज पर भेज सकते हैं।

स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे आप सुनेंगे शाम 5:20 पर और 5:30 स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। शाम 6:30 पर अमृत बाणी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शब्द। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। रात 10:30 पर सुरसांज कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाते हैं मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद। प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर, उसके बाद शाम 6:10 पर। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 8:00 समाचार प्रभात, सुबह 10:00, दोपहर 12:00, दोपहर 2:15 पर, शाम 5:00, शाम 6:00, रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11:00। झरोखा में ये थी जानकारी।

हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों के साथ साथ विविध भारती के कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे 6:35 पर श्री रामचरित मानस, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 भोले बिस्वे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, फिल्मों से लिए गए युगल गाने, 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष और 8:30 पर चित्रलोक।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज सुनिए इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: रविंद्र जी, तबले के दौर की बात हो रही है तो तीन ताल की हमने पिछले कड़ियों में बात की। हाँ। तीन ताल के अलावा फिल्म संगीत में और कौन से ताल है जिनका उपयोग किया गया है?
2: जी, तीन ताल के अलावा शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायन में जो ताल हम लोग संगत के लिए लेते हैं
1: जी,
2: उसमें भी एक है कि तीन ताल की जैसे खूबसूरती है तो वैसी ही खूबसूरती है रूपक ताल की। ये सात मात्रा का ताल है, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। तो ये रूपक ताल जो है इसकी विशेषता ये रही है कि रूपक ताल में कई सारे गीत फिल्मों में आए हैं और ज़्यादातर गीत जो रूपक ताल में बने हैं वो सारे के सारे गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वो जो है सात मात्रा का चक्र जो है
1: जी,
2: वो इतनी खूबसूरती से आता है कि वो बड़ा लुभावना बन जाता है। तो ऐसे कई सारे गाने हैं रूपक ताल के
1: जी। और जहां तक मेरा ख्याल है ये एक ही ताल है जिसकी शुरुआत खाली से होती है।
2: हाँ, खाली से होती है, ती पर खाली है, ती ती ना धी ना धी ना
1: जी।
2: तो वो खाली से शुरू होने वाला ये,
1: और ये निरालापन ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है।
2: बिल्कुल,
1: और इसी वजह से वो सारे गीत जिसमें निबद्ध होते हैं रूपक में तो बड़े सुनने को
2: बहुत ही
1: प्रिय होते हैं। तो इस ताल में निबद्ध कौन सा गीत हम सुनने वाले हैं?
2: आपकी नजरों ने समझा।
1: क्या बात है, अनपढ़ फिल्म का बहुत ही सुंदर गाना है लता जी के स्वर में, मदन मोहन साहब की संगीत रचना
2: जी।
1: आइए सुनते हैं।

0: ताल में निबद्ध ये गीत हम सुन रहे थे अनपढ़ फिल्म से। रविंद्र जी, रूपक के बाद अब किस ताल की चर्चा करेंगे?
1: रूपक से ही बहुत करीबी रिश्ता रखता है। जैसे रूपक की 7 मात्रा है
0: जी जी,
1: तो उसकी दुगनी 14 मात्रा 14 मात्रा का दीपचंदी ताल है। अभी ये जो है रूपक जो है वो ती ती ना धी ना धी ना ती, ये रूपक है। और दीपचंदी जो है वो धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा, तो ये जो है ये रूपक है के साथ में ही दीपचंदी है, जो दीपचंदी 14 मात्रा का ताल है। तो दीपचंदी के भी कई सारी रचनाएं हुई है, और इसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि रूपक का जो गीत है वो हम दीपचंदी में भी गा ले या दीपचंदी का जो गीत है वो हम रूपक में भी गा ले,
0: ऐसा नहीं होता।
1: ऐसा नहीं होता क्योंकि वो दोनों ताल की अपनी अपनी खूबसूरती है और अपना अपना उनका एक लहजा है, तो उसी लहजे में वो आता है। इसलिए दीपचंदी के गीतों का भी एक अपना सौंदर्य है, बहुत अच्छा लगता है।
0: मिसाल के तौर पे कौन सा गाना
1: दीपचंदी में? अजीर उठकर अब कहाँ जाइए,
0: आरजू फिल्म की बात आप कर रहे हैं।
1: जी जी
0: जी जी जी, बहुत ही सुंदर गीत है जो राग देश पर आधारित है, और दीपचंदी में निबद्ध इस गीत को पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे बात करें।

0: श्रोताओं, शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ गीत आप सुन रहे थे फिल्म आरजू से, लता मंगेशकर का स्वर। ऐसा ही एक और गीत है रविंद्र जी,
1: जी
0: कश्मीर की कली फिल्म से।
1: हाँ।
0: ये भी ताल दीप चंदी में निबद्ध है।
1: हाँ।
0: इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: इशारों इशारों में दिल लेने वाले,
0: इसकी भी झलक सुनते चले
1: बिल्कुल।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये थी झलक कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत की, जो ताल दीपचंदी में निबद्ध है और राग पहाड़ी पर आधारित है। संगीतकार ओपी नैयर। रविंद्र जी, रूपक 7 मात्रा का ताल है और दीपचंदी 14 मात्रा का।
1: हाँ।
0: फिर इन दोनों तालों का एक साथ प्रयोग किसी गीत में कभी हुआ है?
1: बिल्कुल हुआ है, और वो जो गीत है वो मेरे ख्याल से सभी का बड़ा प्रिय गीत है, वो पिया तो से नैना लागे रे। बहुत ही खूबसूरत गाना है और कई सारी विशेषताएं इसमें है। एसडी बर्मन साहब का मतलब बहुत ही अच्छा प्रयोग हम कह सकते हैं। ये इसमें जो है ना वो है तालवाद्य कचेरी।
0: जी,
1: तालवाद्य कचेरी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे तालवाद्य है और उन तालवाद्यों का सोलो परफॉर्मेंस। तो तालवाद्य कचेरी के तो अपने स्वतंत्र कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसको ये फिल्म गीतों में लाना एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है, और जो एसडी बर्मन साहब ने किया है। तो पिया तो से नैना लागे में ये जो गीत है तो इसमें वो तालवाद्य कचेरी अंत में बजती है, लेकिन ये जो गाना है इसमें रूपक भी है और उसके साथ साथ दीपचंदी भी है। तो दीपचंदी और रूपक दोनों को सुनने का मजा इसमें है, इस गाने में। मतलब जो उसका वजन एक बार रूपक का है एक बार दीपचंदी का है, दोनों बहुत ही अच्छा लगते हैं। और एक इसमें बहुत अच्छा प्रयोग है जो है कि तबले का उपयोग फिलर की तौर पर, मतलब इंटरलूड।
0: अच्छा।
1: जो गाने के बीच में जैसे वो शब्द आता है पिया तो से धगने धिन्ना धनना नना नना, तो ये जो छोटा सा पीस है जिसको हम इंटरलूड कहते हैं, तो अक्सर वो किसी इंस्ट्रूमेंट पे बजाते हैं। ये इस गाने में वो तबले पे बजा है इंटरलूड, और वो बहुत ही खूबसूरत है।

0: रूपक ताल और दीपचंदी ताल का साथ साथ प्रयोग जिस गीत में किया गया, गाइड फिल्म का वही गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता जी के स्वर में, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आज हमने आपको सुनवाई इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।

0: ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर होंगे।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं पूजा नारानिया, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है मुकेश ने। भरत व्यास की बोल है सतीश भाटिया का संगीत। फिल्म का नाम बूंद जो बन गई मोती।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम भूलिए बिसरे गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पतंगा से शमशाद बेगम का गाया गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, सी रामचंद्र का संगीत है।

अभी आपने शमशाद बेगम का गाया गीत सुना। अब आपको सुनवा रहे हैं तुलसीदास फिल्म से आशा भोसले और साथियों के स्वरों में जीएस नेपाली का लिखा गीत। धुन बनाई है चित्रगुप्त ने।

0: अभी आपने सुना आशा भोसले और साथियों के स्वरों में ये गीत, और आइए अब सुनते हैं ये संदेश, और संदेश के बाद लेते हैं एक अंतराल।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तनी।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज़, सुनहरे गानों का अंदाज़।

0: आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: श्रोताओं, भूले बिसरे गीत में इस वक्त हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत। फिल्म का नाम है नास्तिक। प्रदीप ने इस गीत को लिखा है, सी रामचंद्र ने संगीत से सजाया है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मेला से। ये गीत शमशाद बेगम और मुकेश के युगल स्वर हैं। शकील बदायूनी का लिखा गीत, नौशाद अली का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म शर्त से ये गीत, जिसे लिखा है SH बिहारी ने। गायक कलाकार और संगीतकार हेमंत कुमार।

अब आपको सुनवा रहे हैं मयूर पंख फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत। रचना हसर जयपुरी की है और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: मयूर पंख फिल्म से लता मंगेशकर का गाया ये गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ में कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम हम है राही प्यार के लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूं पूजा नरानिया, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से। आशा भोसले और अनवर की आवाजें, निदा फाजली के बोल, धुन बनाई है खयाम ने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार की। चुपके चुपके इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में। आनंद बख्शी की रचना है, धुन बनाई है एसडी बर्मन ने।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हम है राही प्यार की इस कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत हमारा संसार फिल्म से।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम हम ही राही प्यार की में स्वागत है। आपको सुनवा रहे थे हमारा संसार फिल्म का गीत महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजों में। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

जिगरी दोस्त इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: हम मस्ताने का इश्क है दीवाने का और तीर होता है निशाने का मेरी तू।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम नाइट इन लंदन।

आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना है, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फिल्म का नाम प्यार की जा।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में प्यार की जायज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की यहीं संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं कुछी पलों में। हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए, बस सबसे कुछ ही पलों में।

0: जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है? पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
4: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
4: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: जन जन का

ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर

0: केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

वंदे मातरम एक जय घोष, मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 31वीं कड़ी।

बंगाल में पद्मा और मेघना इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी गिरामी नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े उत्साह से शामिल होने के लिए बारिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कवि भी थे। बारिसाल के इस अधिवेशन के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कविता रची थी। आए रे सब भारतवासी, आए सब मिले, प्रणामी भारत माता।

सब भारतवासी आओ, सब मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्री राम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंग बंग विरोधी आंदोलन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गीत।

पार कविता में अंतिम पंक्ति में वंदे मातरम शब्दों के साथ वे लिखते हैं, भैया देश का ये क्या हाल, खाक मिट्टी और जौहर होती सब, जौहर है जंजाल, बोलो वंदे।

0: विस्फोटक होगा इसका अंदाजा लगते ही बंगाल के गवर्नर फुलर ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने और वंदे मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाम से बारिसाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
2: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
1: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,
3: मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, चाहे इसके लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा, इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
1: बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारिसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
3: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर यह पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहाँ के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए।
0: परंतु ये सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि, हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
1: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए। इस अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष बरिस्टर अब्दुल रसूल सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे। जुलूस में युवकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए, मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार फुलर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्थी भीड़ पर हमला कर दिया।

इस हमले के लिए फुलर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिसाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से फुलर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। उसके साथ ही मागो जाए जन जीवन चले यह गीत भी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे थे।

बैटरी चार्ज से फणीन्द्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन गुरु ठाकुर, अरविंद बाबू, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ दत्त कोई भी नहीं बच सका। सबका शरीर

0: आह्वान हो गया। पुलिस अधिकारी कैंप खुद लाठीचार्ज में सबसे आगे था। कृष्ण कुमार मित्र ने कैंप से कहा,
1: आप अपनी पुलिस को रोकिए, नहीं तो आपके सामने इससे भी कठिन चुनौतियां खड़ी होंगी। अपनी पुलिस को रोकना आपका कर्तव्य है।
0: कैंप ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया,
2: मेरा ड्यूटी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपके सलाह का जरूरत नहीं है।
0: पर कुल मिलाकर घटना की गंभीरता समझकर उन्होंने लाठीचार्ज बंद किया और आसमान में बस दो ही शब्दों की गूंज बार बार आती रही।

वंदे मातरम, एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 31वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया। आइए अब सुनें देश गान।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे

0: इस को खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
3: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
3: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
3: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

कुछ कुछ होता है इस मूवी के सॉन्ग से हमने शुरुआत करी। कार्यक्रम चित्रलोक की उदित नारायण अंकायाग में कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें थी। समय के बोल जतिन ललित का संगीत। श्रोताओं, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित करना है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के नेतृत्व में मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम भी देखिए, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को समझना और उनके समाधान के लिए लोगों को प्रेरित करना, यानी सामूहिक रूप से कुछ कार्य करना और समझना। वर्ष 2026 के वैश्विक समारोह की मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की क्या थीम थी? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना था। और इस ओर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ हमारे कर्तव्य जो होते हैं, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, हम जानते हैं ना। बिजली और पानी की बचत भी करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, ऊर्जा की बचत करनी होगी, कचरे को अलग अलग करके रिसाइकल करना होगा, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना होगा, भोजन की बर्बादी को रोकना होगा, कागज का उपयोग कम करना होगा। वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल अगर हम ज्यादा यूज कर रहे हैं तो कागज की बचत होने ही वाली है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये हमारे योगदान के लिए बहुत जरूरी है। स्थानीय और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद अपनाने की जरूरत है। दूसरों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना, ये तो हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हम अपनी दैनिक जीवन शैली में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाएं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरा भरा वातावरण बना सकेंगे।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। अब आपको सुनाने जा रहे हैं मिशन मजनू फिल्म का ये गीत, शब्बीर अहमद की लिखी बोल, तनिष्क बागची का संगीत, जुबीन नौटियाल की आवाज।

तिथि को जिसे मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ, दान का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं या फिर जो नहीं जा पाते हैं वो घर पर ही गंगा जल रखते हैं और उसी को पानी में मिलाकर और उसी से स्नान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन जो स्नान होता है उसे अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस अवसर पर दशविध स्नान का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसमें शरीर से किए गए 3 प्रकार के पाप, वाणी से जुड़े 4 प्रकार के पाप और मन से किए गए 3 प्रकार के पाप शामिल माने जाते हैं। इस तरह गंगा दशहरा का स्नान आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है।

गंगा दशहरा की बात हो रही थी, इसलिए चंद्रानी मुखर्जी और साथियों के सुर में गंगा माँ पर आधारित ये सॉन्ग हमने आपको सुनवाया है। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत बेवफा फिल्म से, उदित नारायण की आवाज, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, आज है अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग डे। हर साल ये 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2017 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और पहला IUU दिवस 5 जून 2018 को मनाया गया था। इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी और पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट PSMA। यह दिवस PSMA की भी वर्षगांठ का प्रतीक है, जो अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए दुनिया की पहली बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है ना, अवैध मछली पकड़ने और इससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान से दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, पढ़ाना है।

फिशिंग से महासागरों में जीव विविधता, समुद्र संसाधनों और मछुआरों की आजीविका को भी भारी खतरा होता है श्रोताओं, जो कि नियमों का पालन करते हैं।

अमिताभ भट्टाचार्य की बोल प्रीतम की बनाई धुन पर अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजों में ए दिल है मुश्किल फिल्म का ये गीत। और अब आपको सुनाने जा रही है समीर का लिखा गीत प्रीति पिंकी और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में मुझे कुछ कहना है फिल्म से।

0: खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य

श्रोताओ, अंतराल की बात कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का फिर से स्वागत है। श्रोताओ, आज 4 बजे शाम को पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी का शीर्षक है नजरिया। वाचन स्वयं नेहा शर्मा का है, संपादन सहायक काजल भतरगी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इश्क विश्क फिल्म का ये गीत, अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में। समी ने इसे लिखा है, अनु मलिक ने संगीत से सजाया है।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहीं
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियों फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आप मुझे अच्छी लगने लगी। इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और अभिजीत की युगल स्वरों में, इब्राहिम अश्क की शब्द रचना है, राजेश रोशन की बनाई तर्ज।

कभी कभी आप सुन रहे थे आप मुझे अच्छे लगने लगे अलका याग्निक और अभिजीत की युगल आवाजों में। और अब आपको कार्यक्रम त्रितलोक का आखिरी गीत सुनवाने जा रहे हैं। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल, सोना मोहपात्रा की आवाजें, कुमार का लिखा गीत, विशाल शेखर का संगीत। इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर और रात को पुनः 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। सुनना नहीं भूलिएगा।

0: संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा, मुझे यानी पूजोनी रानिया को नमस्कार।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 9:30 हो चुके हैं। अगला प्रोग्राम आज का अखबार।
4: आज का अखबार।

नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम लेकर आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। आपके सफर के हम सफर बनकर इस प्रोग्राम में 10 बजे तक आपके साथ रहेंगे और अखबारों से ली गई जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मौसम की बात करें तो मौसम तो बदला है और कब सुहावना हो जाए, कब गर्मी सताने लगे, कुछ पता नहीं। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि मौसम आने वाले दिनों में भी सुहावना होगा, यानी गर्मी से राहत मिलती रहेगी। और गर्मी के बारे में, मौसम के बारे में आपको और जानकारी देंगे। फिलहाल एक नजर दौड़ाते हैं आज की हेडलाइंस पर, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और खेल जगत से जुड़ी ये हेडलाइंस हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल संकट के चक्रव्यूह को तोड़ेगी भारत वेनेजुएला की दोस्ती। इसके साथ ही भारत अमेरिका व्यापार समझौते की राहें आसान। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज की मुलाकात। रक्षा खरीद को मिलेगी रफ्तार, तेजी से आगे बढ़ेंगी परियोजनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने

इसके साथ साथ 20,000 के करीब स्वदेशी ड्रोन खरीदेगी सरकार। मशहूर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप नहीं रहे। दिल्ली में होटल का आग कांड के होटल मालिक 4 दिन के रिमांड पर लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू।

कपूर अपने करियर की शुरुआत की 1982 की फिल्म हथकड़ी से। इल्जाम फिल्म के जरिए 1986 में अभिनेता गोविंदा को

अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में, हिजबुल्ला के हमले ना करने की शर्त पर इजराइल लेबनान में युद्ध विराम। राष्ट्रपति ट्रंप को झटका, अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध रोकने का प्रस्ताव पास। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डालने की अमेरिकी कोशिशें व्यर्थ। और अब चलते हैं कारोबार जगत में। खाद्य तेल बाजार में खत्म होगा मनमाने पैक का खेल, सरकार तय करेगी मानक, बाजार में बढ़ेगी जवाबदेही। और खेलों की दुनिया में, अफगानिस्तान के खिलाफ 13 जून से शुरू होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हुए विराट कोहली, रोहित का खेलना भी फिलहाल तय नहीं। प्रशिक्षक को निखारने के लिए स्थापित होगा NCAB। विश्व चैंपियन मुक्केबाज जैस्मिन बनी विश्व नंबर 1, प्रिया और विश्वनाथ टॉप 3 में। और फीफा फुटबॉल कप के बारे में बात करें, मैचों की गति बढ़ाने और समय की बर्बादी रोकने के लिए नए तरीके लागू होंगे। पहली बार फुटबॉल महाकुंभ में लागू होंगे ये तरीके। और फीफा फुटबॉल कप को 6 दिन शेष। दोस्तों मौसम की बात करें।

लेकिन सबसे पहले बात आज हम करेंगे आपसे पर्यावरण दिवस के बारे में। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है और पर्यावरण को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे काम हैं जो बिना देरी के हमें अपनी दिनचर्या में करने हैं, निभाने हैं, ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे। और कहते हैं कि छोटे छोटे कदम हमारी दिनचर्या में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं हमारे पर्यावरण में। तो आइए आज के दिन प्रण करें कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ हरा भरा बनाने के लिए हम काम करते रहेंगे। अब बात करते हैं मानसून की। दोस्तों, केरल पहुंचा है मानसून, उत्तर भारत भी भीगा है। कल आंधी बारिश, तेज आंधी तेज बारिश ने सबको भिगो दिया। दक्षिण पश्चिम मानसून ने कल केरल में दस्तक दी है। वहीं हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर भारत में कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ बारिश भी हुई। आम तौर पर मानसून, यह कहा जाता है कि 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु जो जून से सितंबर तक मानी जाती है की शुरुआत का संकेत माना जाता है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर के शेष हिस्सों, पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ भागों से होता हुआ, ये जो है बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों तक आगे बढ़ गया है। और मौसम विभाग के अनुसार इस साल देश में मौसमी वर्षा लगभग 90% रहने की संभावना है। और अल नीनो के बारे में जो संभावना जताई जा रही थी, उसके बारे में यह कहना है कि अल नीनो की स्थिति फिलहाल कमजोर रहने की संभावना है, जबकि सितंबर तक इसके मध्यम से मजबूत होने की आशंका है। और अगर बात करें ट्राई सिटी के मौसम के बारे में, तो यहां आज बादल छा सकते हैं, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। शनिवार को कहीं कहीं बादल छा सकते हैं, 38 अधिकतम तापमान रहेगा और 24 न्यूनतम। और फिर संडे के दिन आमतौर से आसमान साफ रह सकता है, अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रह सकता है। अगले 2 से 3 दिन गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि इस समय वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है। इसे अरब सागर से नमी के साथ हवाएं आ रही हैं, यानी मौसम सुहाना होता रहेगा।

0: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
1: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रही। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
0: ये आकाशवाणी है।
1: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
0: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
1: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
0: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
1: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
0: आइए मिलकर मनाए आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
1: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
0: ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी है।

वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं अपनी रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। पहले पंजाब की बात करते हैं। डेरा बाबा नानक कोटली सूरत मल्ली गांव के बटाला रोड पर पेट्रोल पंप पर खड़े भाजपा नेता पर दागी 8 गोलियां, छिपकर जान बचाई। बाइक पर आए 2 हमलावरों ने चलाई लगातार गोलियां। पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, IID के साथ मोहाली से 2 गिरफ्तार। सोशल मीडिया से विदेशी हैंडलर के संपर्क में आए, YPS चौक से पकड़े गए। पंजाब में बेकाबू हो रहा है मोटापा, खान पान बन रहा कारण, मोटे लोगों का प्रतिशत बढ़ा, प्रति व्यक्ति फैट का सेवन बढ़ा पंजाब में, ये एक रिपोर्ट है। और पंजाब के मौसम की बात करें तो पंजाब में कल आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। 2 दिन के लिए बादलवाही, आंधी और बारिश का अलर्ट बताया गया है। आतंकी मूसा के चचेरे भाई समेत 3 कश्मीरी छात्रों को 10-10 साल की कैद। जालंधर में हथियार और विस्फोटक के साथ हुए थे गिरफ्तार प्रतिबंधित आतंकी संगठन गजवत उल हिंद से जुड़े थे। पंजाब के बाद अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में आयुष्मान लाभार्थियों का इलाज बंद नहीं करेंगे निजी अस्पताल, फैसला हुआ वापस। फरीदाबाद में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान हादसा हुआ, गर्डर उठा रही क्रेन पलटी, 6 मजदूर दबे।

तीन की मौत। हरियाणा में कल आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी में मौसम ऐसा बना, दो दिन बादलवाही आंधी बारिश, गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऑरेंज अलर्ट है हरियाणा के लिए। रीजनल हेडलाइंस का सिलसिला जारी है। बिजली बिल होंगे जीरो, बैंक के

रीजनल हेडलाइंस का सिलसिला जारी है। बिजली बिल होंगे जीरो, बैंक के चक्कर भी खत्म होंगे। हरियाणा सरकार ला रही घर घर सोलर वाला फार्मूला। बड़े शहरों की दौड़ खत्म, सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हरियाणा में। और पंजाब हरियाणा के बाद अब चलते हैं हिमाचल की ओर। हिमाचल में प्रवेश परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सिस्टम कमेटी का होगा पुनर्गठन।

माँ शूलिनी मेला 26 जून से। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। अब बारी गाने की, गाने के बाद लोकल हेडलाइंस।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, विविध भारती चंडीगढ़ से कार्यक्रम चल रहा है आज का अखबार। अखबारों से ली गई जानकारी साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स हम प्ले कर रहे हैं। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब बारी हुई लोकल हेडलाइंस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। आज के लोकल अखबारों में सबसे पहले पंचकूला की बात करते हैं। पंचकूला सेक्टर 5 में बुधवार रात हुई एक वारदात, रंगदारी ना देने पर क्लब संचालक लुबाना पर फायरिंग, लेकिन दो शूटर गिरफ्तार कर लिए गए। पंजाब कला भवन में चंडीगढ़ की बात करें तो पंजाब कला भवन ओपन एयर थिएटर की कायाकल्प, पहली बार वुडन फ्लोरिंग। पंजाब कला भवन 16 में ओपन एयर थिएटर का नवीनीकरण हो रहा है, इसमें लाइट्स, कर्टन और सीटिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। मौसम की बात करें ट्राई सिटी के, तो चंडीगढ़ में दिन भर गर्मी, शाम को बारिश, 3 घंटे में गिरा 13.2 डिग्री पारा, आज भी बरस सकते हैं बादल और 2-3 दिन तक गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम केंद्र सेक्टर 39 में 5.6 mm बारिश दर्ज की गई, 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाएं। चंडीगढ़ में प्रशासक की रिव्यू मीटिंग हुई है, इस मॉनसून क्वालिटी प्लांटेशन पर फोकस। और चंडीगढ़ में आज से चलेगा अभियान, प्रमुख सड़कों के पेड़ों से LED लाइटें, कंक्रीट हटाकर जड़ों को दी जाएगी खुली सांस। चंडीगढ़ के मलोया में GMSS स्कूल में बनेगा आधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक। चंडीगढ़ में ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल के समक्ष चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने उठाई अपनी आवाज और कहा कि नेशनल अर्बन पार्लियामेंट बनाने की है जरूरत। अब बात करते हैं शिक्षा से जुड़ी हुई। चंडीगढ़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक में BTEC के दाखिले शुरू, JEE मींस रैंक पर मिलेगा प्रवेश। पंजाब यूनिवर्सिटी में फ्रेंच भाषा के कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों शिक्षकों के बच्चों को दाखिले में मिलेगा विशेष मौका। ये तो थी लोकल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की, लोकल समाचार पत्रों की। और जैसा कि आप सबको मालूम है आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर 10:05 पर हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम

हेलो चंडीगढ़ में, जाहिर सी बात है इससे जुड़ा ही विषय होगा और विषय हमारा रहेगा कि जब तक पेड़ पौधे वन हैं, जब तक पेड़ पौधे वन हैं तभी तक स्वस्थ हम हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक। अब बारी गाने की।

0: और दोस्तों, देश में सबसे बड़े कदम की अगर हम बात करें पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर, तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च की है। इससे क्या होगा कि किसानों की आय भी बढ़ेगी और शून्य उत्सर्जन वाहन के तौर पर ये जो कार है वो लॉन्च की गई है। इससे हमारा जो प्रदूषण है वो कम होगा, उस पर कंट्रोल होगा, वो घटेगा। इसके साथ साथ एथेनॉल से भी चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च की गई है। 5000 पंप खुलेंगे। ये है बड़ा कदम आने वाले समय के लिए। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने के अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 10 बजने को ही अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक

0: राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक अब से कुछ देर में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा मुंबई में ये घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को विश्वसनीय साझेदार मानता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक संस्कृति का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण न केवल एक जिम्मेदारी है बल्कि देश की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग भी है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।

0: आपके साथ रहेंगे इस प्रोग्राम में। आज चूंकि विश्व पर्यावरण दिवस है, दुनिया भर में इस दिवस को लेकर जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, अभियान चल रहे हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने पर्यावरण के लिए आप सबको हम शुभकामनाएं देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं, क्योंकि इसी से ही हमारा मंगल जुड़ा है, हमारे शुभ काम, हमारा स्वास्थ्य, हमारी आन बान सब कुछ पर्यावरण के साथ जुड़ी है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने जो टॉपिक चुना है, वो टॉपिक चुना है कि जब तक पेड़ पौधे वन हैं, तभी तक स्वस्थ हम हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, और इस टॉपिक पर अपने फोन मिलाने के लिए, हमारे नंबर्स डायल करने के लिए नोट कीजिए, हमारे नंबर्स 2660615, 2660617 और 2660619। ये तीन नंबर्स हैं हमारे, किसी एक को डायल करना है आपको और बातें कर लेना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और दोस्तों ये डे दुनिया में क्यों मनाया जाता है, ये मनाना क्यों ज़रूरी है, ये हर कोई जानता है, समझता है, लेकिन बस अब बात केवल इतनी है कि हमें अपने प्रयास जो हैं वो और तेज़ करने होंगे, मजबूत करने होंगे, हरे भरे करने होंगे। इस बार की थीम है कि जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए एक वैश्विक आह्वान, जलवायु संकट और समाधान, छोटे कदम बड़ा बदलाव, मिलकर प्रयास, बेहतर भविष्य, स्वस्थ धरती, खुशहाल जीवन। तो बातें पर्यावरण से जुड़ी, हरियाली से जुड़ी होती रहेंगी इस प्रोग्राम में। फिलहाल हमारे श्रोता जो हैं वो आ चुके हैं, पहले बारी इनकी। हेलो चंडीगढ़, जी नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: हेलो
0: जी,
1: नमस्कार अनिल जी।
0: जी वेलकम जी,
1: मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
0: आज तो बड़ी दौड़ लगाई आपने, पहले नंबर पर पहुंच गया।
1: टॉपिक है ना, कम से कम मैं अपना जो मन का दुख है वो यहाँ बता तो सकते हो।
0: जी जी जी,
1: जो पेड़ है इनको कैसे हम बेरहमी से काट रहे हैं, कर रहे हैं, पानी की बर्बादी कर रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर सारे हम खुद ही खत्म कर रहे हैं।
0: जी सही कह रहे हैं,
1: इसलिए ये टॉपिक मेरे दिल को बहुत छूता है। मैं मतलब समझ नहीं आती कि कैसे हम लोग बचाएं अपनी इस पृथ्वी को। देखिए जगह जगह इतनी इतनी सोसाइटियां बन रही हैं, गांव के गांव बिक रहे हैं, जहां कभी पेड़ों के इतने सुहाने बाग बगीचे होते थे वहां बिल्डिंग्स ने जगह ले ली।
0: जी
1: ये वही धरती तो एक ही है, कब तक उस पे बोझ डालेंगे, एक दिन तो वो फट जाएगी और सबको ही निगल लेगी। हम लोग किसकी वेट कर रहे हैं, प्यास की, भूख की, अकाल की, किस चीज की, जो खराब से खराब चीज है उसकी हम वेट कर रहे हैं।
0: जी
1: देखिए हम अपने घरों से शुरू करें तो हम लोग अपने पेड़ों को कैसे जला रहे हैं कि अगर घर में एक एसी की जरूरत है, हम चार लगाते हैं
0: जी,
1: कि हमने चार लगाए हैं, एक बिल्डिंग में कम से कम 1000 AC लगा होता है, ये इसकी गर्म हवा पत्तों को जलाती है, पेड़ तो आ गई नहीं है, जो है उनको वो जला रही है। दूसरा ये जो गलत पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, एक सड़क बनाने के लिए, जैसे कल मैं देख रही थी कि देहरादून से मसूरी जाने के लिए शॉर्टकट बनाने के लिए कितना पेड़ काट दिया रातों रात।
0: जी
1: एक पेड़ को उगने में कितना टाइम लगता है, काटने में तो 2 मिनट भी नहीं लगते।
0: जी लेकिन वो सड़क बनाने के लिए, क्योंकि देखिए विकास भी जरूरी है इतनी बड़ी आबादी के लिए, रास्ते भी खोलने हैं, नए रास्ते बनाने हैं, अगर वो नहीं बनेंगे तो फिर तरक्की कैसी होगी, काम कैसा होगा। लेकिन उसके साथ साथ नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं मैं पूरी कर लूं अपनी बात, उसके साथ साथ क्या है कि जब सड़क कोई बनाई जाती है तो जो बनाता है उसकी शर्तों में ये लिखा रहता है कि इतने अगर पेड़ हटाए जाएंगे, इसकी एवज में इतने पेड़ लगाए भी जाएंगे, वहां की हरियाली को बरकरार किया जाएगा।
1: एक बात बताइए
0: जी,
1: एक पौधे को पेड़ बनने

नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लाइव ऑन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ लेकर हम आपके साथ हैं और अब से लेकर 11 बजे तक

0: में साल से ऊपर लगेगा छोटा सा पेड़
1: जी
0: बनने
1: जी
0: में,
1: जी जी जी
0: और जो हम काट देते हैं वो तो मिनटों सेकंडों की बात है, और सारी ऑक्सीजन हम खत्म कर रहे हैं धरती की।
1: अब देखिए जो हमारे चंडीगढ़ के पेड़ों की अगर हम बात करें तो अब ये तैयारी चल रही है कि आज से वो अभियान जो है आज से चलने वाला है, वो क्या है कि पेड़ों को मिलेगा नया जीवन। निगम जो है उसके आसपास जो कीले लगी हुई हैं, कहीं कहीं होर्डिंग्स हैं जहां पे, उनको हटाया जाएगा, उनकी जड़ों के आसपास के एरिए को साफ किया जाएगा, जो उनकी कुदरती तौर पे जो उनकी एरिया है उसको साफ किया जाएगा ताकि उन्हें खुली सांस मिल सके। तो ये अभियान चलाया जाएगा।
0: अनिल जी कई किताबी बातें आपको बताएं, हम पंचकुला जो कभी इतना खूबसूरत था इस टाइम शायद डर्टीएस्ट मॉडर्न सिटी है, क्यों? बुक्स में तो अभी भी बहुत साफ सुथरी है, रैंकिंग भी अच्छी है। इसी तरह से ये पेड़ों को क्यों काटते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आई। इतने पुराना एक बरगद का पेड़ दिखा रहे हैं, उसका भी दिल्ली में काट दिया जाएगा जिसके आसपास कम से कम 20-30 लोग बैठ सकते हैं। जब तक हम हमारी आत्मा नहीं जागेगी अनिल जी, कुछ नहीं हो सकता।
1: जी बिल्कुल सही है।
0: फर्नीचर ढेरों ढेर फर्नीचर बनाते हैं, कितने पेड़ काटते हैं, और दीवारों पे हम बना बना के पेंटिंग उसकी लकड़ी की चीजें बना के लगाते हैं, क्यों
1: तो
0: लगाते हैं?
1: ये तो बेदी जी आपने अपना दुख जो है उसका
0: बहुत
1: इजहार किया आपने, तो अब आपके दुख को सुख में कैसे बदला जाए? आप ऐसा कीजिए,
0: आत्मा जगाए लोग
1: नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए आज सुख वाला एक पेड़ अपने हाथ से लगा दीजिए पौधा।
0: मेरे घर तो पेड़ लगाने की जगह मैं कम से अश्वगंधा का पेड़ छाता से लगाया हुआ है
1: जी,
0: क्योंकि हमें कभी कहते थे योग में कि मेडिसिनल प्लांट्स लगाओ।
1: जी जी जी,
0: तो हमने लगाए हुए हैं, यानी जितनी जगह हमारे पास।
1: अच्छा, आप तो योग की क्लासेस लेती हैं?
0: हाँ जी।
1: आप ये बताइए कि आपकी क्लासेस में क्या ये बताया जाता है कि कौन सा पेड़ जो है वो अच्छी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है, या उसके नीचे बैठना अच्छा होता है?
0: हाँ, जैसे हम लोगों को कहते थे कि पहले अश्वगंधा लगाइए, फिर वो जो होती है दूसरी तुलसी होती है एक मोटी, वो भी
1: लगाइए,
0: उससे सांप कीड़े नहीं आते
1: जी।
0: बड़ी अच्छी शिक्षा देते थे, तो हम लोगों ने वही चीजें अपने घरों में लगाई हुई हैं।
1: हाँ। तो वैसे एक बात है बेदी जी, हमारा जो शहर है चंडीगढ़, यहाँ पर जो ग्रीन कवर है ना, देश में सबसे ज्यादा है, 18.58% ट्री कवर है।
0: या तो पर आप देखिए झील के उस पार जाइए,
1: और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
0: तो चीते घरों में घूम रहे हैं अब क्या करें इनका सबका। जब तक देखिए अंतरात्मा नहीं जागती ना, दुनिया में कुछ नहीं हो सकता।
1: अच्छा, खैर आज हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि मुझे लगता है कि जिस तरह से आप दिल को बात लगाती हैं, कोई भी आपके आसपास ऐसी कोई घटना होती है आप उसे मन पर लेती हैं, तो आप तो वाकई अपनी दिनचर्या में इन बातों का विशेष तौर से बहुत ख्याल रखती होंगी।
0: आपको बताऊं, मैंने अपनी बॉडी पीजीआई को दे दी है 2007 से।
1: जी जी,
0: क्यों? मैं चाहती हूँ सभी या तो बॉडी डोनेट करें या कुछ। जब हम मरते हैं दो पेड़ भी हमारे साथ मरते हैं लकड़ियों के
1: जी।
0: अगर हम कहते हैं हम ये दान कर रहे हैं, हम मर्डर कर रहे हैं दो पेड़ों का। अगर ऐसे सोचे तो दुनिया में शायद ये लोग कभी पेड़ ना खत्म हो, कुछ ना हो, कोई सोच बदलनी पड़ेगी।
1: आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, दिल से जो कहते दिल से महसूस की गई बातें, केवल बातें नहीं है ये, बातें दिल से महसूस कर।
0: मैं उस पे चलती भी जरूर हूँ।
1: तो आप तो स्वस्थ रहे, आपकी हंसी में यही हरियाली, यही ताजगी, यही महक बनी रहे।
0: चलो, थैंक यू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू।

वेलकम बैक दोस्तों। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर हमारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है आप सबके लिए, बात करने के लिए कि जब तक पेड़

0: पौधे वन हैं यानी जंगल हैं तभी तक स्वस्थ हम हैं। हमारा जो स्वास्थ्य है सीधे पेड़ पौधों से, जंगलों से, हरियाली से, हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जो हमारे चंडीगढ़ के आसपास फॉरेस्ट एरिया है, नेपली है, कांसल है, ये घना जंगल माना जाता है। और ये जो जंगल हैं, आज के अखबार में लिखा है कि लगभग 42.7 टन ऑक्सीजन रोज हवा में छोड़ते हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सर्वे है। और दो नर तेंदुओं ने पहली बार सेंचुरी को अपना परमानेंट घर बनाया है। 43 तरह के पेड़ हैं, 14 तरह की झाड़ियां हैं, 22 तरह की जड़ी बूटियां यहां पाई जाती हैं, 16 प्रजातियां मिली वन्य जीवों की, 603 सांभर हैं, 132 तरह के पक्षी हैं। तो हम बड़े किस्मत वाले हैं कि हमारे शहर के आसपास इतना घना जंगल है और इस जंगल में इतना सब कुछ है। क्योंकि अगर जंगल घना है, हरा भरा है, उसमें रहने के लिए वन्य जीव आते हैं, तो ये हमारा जो पर्यावरण है उसको बैलेंस करके रखते हैं। तो ये सब जरूरी हैं हमारे पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वन्य जीव, वन संपदा। और हाँ, गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने का डर रहता है और बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं ऐसी, तो आप सुनिश्चित करें कि कभी जंगल से होकर गुजरना पड़े या घने पेड़ों से निकलना पड़े, तो कहीं ऐसी कोई आपको अंदेशा लगता है कि ऐसा हो सकता है या कहीं ऐसी कोई धुआं निकल रहा है, तो ऐसे में आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, इंस्टीट्यूट को ज़रूर जो हैं वो सूचित करें। आपके एक छोटे से प्रयास से हम अपने पर्यावरण को, जंगल को बचा सकते हैं। तो आइए अब अगली कॉल की तरफ चला जाए और बात की जाए। हेलो चंडीगढ़।
1: अनिल भाई को यश कुमार वर्मा जी, प्यार भरे नमस्कार।
0: आइए यश कुमार वर्मा जी, कैसे हैं आप? वेलकम, नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए? क्या हो रहा है वो तो सबको मालूम है, नहीं होना चाहिए वो भी मालूम है, लेकिन क्या करना है अगर आप वो बताएं तो मजा आ जाएगा।
1: जितना आप समझाते हैं,
0: अरे नहीं भाई, मैं समझाने वाला कोई नहीं, मैं तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करता हूँ।
1: नहीं, इंफॉर्मेशन वही तो बता रहा हूँ
0: जी।
1: जितना
0: क्या कह रहे हैं यश जी,
1: मैं कह रहा हूँ जितना आप समझाते हैं अनिल भाई
0: जी,
1: अगर उतना ही हम समझ जाएं
0: जी,
1: तो हमारी संगत तो अपने आप सुधरे।
0: वैसे आप सही कह रहे हैं, अभी देर बहुत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ छूटा नहीं है, मौका अभी दे रही है हमारी धरती माँ। और यश कुमार वर्मा जी, आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया था।
1: बिल्कुल।
0: सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर के लोगों ने उस अभियान को सराहा है। तो आज मौका है एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाए, क्या कहते हैं?
1: बिल्कुल लगाना चाहिए, मैं लगाने की कोशिश करता हूँ
0: जी,
1: लगाऊंगा भी सही और कहीं औरों को भी लगवाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं अकेले लगाऊं, दूसरों को लगवाऊंगा।
0: और देखिए, चंडीगढ़ का जो डंपिंग ग्राउंड है ना
1: जी,
0: वहाँ पर 10,000 पौधे लगाए जाएंगे, बांस के, बोगनवेलिया के और नीम से। ये जो तस्वीर है वहां की बदलेगी, नीम के पौधे लगेंगे। देखिए, नीम का जो पेड़ है अपने आप हवा को बहुत स्वच्छ बनाता है। यश कुमार वर्मा जी, आपके घर के आसपास जगह कितनी है?
1: घर के आसपास जगह तो बस सड़कें, बस सड़कों में गाड़ी।
0: चलिए, कुछ तो आपके आसपास थोड़ी सी तो जगह होगी, आपकी बालकनी में, आपके कमरे के बाहर।
1: अनिल भाई, बालकनी में इतनी जगह है ना कि 10-12 बड़े बड़े गमले में,
0: बस उन गमलों में हरे हरे प्यारे प्यारे खिलखिलाते फूलों को लगाइए।
1: दोपहर में जब धूप निकलते हैं, चुन्नी डाल देता हूँ
0: जी,
1: चुन्नी शाम को फिर उतार के इनको पानी, फिर

0: अच्छी तरह से मैडम कहते हो
1: जी, शुक्रिया आपका बात करने के लिए,
0: धन्यवाद।
1: और आइए चलते हैं आपको लेकर हसीन वादियों में, खुली हवा में, प्यारे प्यारे मौसम में।

0: और ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं हमें कि मेरे पास आओ और संभालो मुझे, ताकि मैं आने वाले समय में आपको आपकी पीढ़ियों को संभालती रहूं। और दोस्तों, 5 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दुनिया भर में जिनका आज के दिन जन्मदिन है, तो भाई आज वो कैसे भी सेलिब्रेट करें, कितनी भी पार्टीज करें, लेकिन एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं, अपनी धरती माँ के नाम, ताकि उनका जो जन्मदिन है वो यादगार बन जाए, हरा भरा बन जाए। तो जब तक पेड़ पौधे वन हैं, तभी तक स्वस्थ हम हैं। ये है टॉपिक हमारा आज का। और अगले श्रोता ऑनलाइन हैं। हेलो चंडीगढ़ जी।
1: नमस्कार सर।
0: वेलकम जी।
1: रविंदर कुमार बोल रहा हूँ सर, गुराया डिस्ट्रिक्ट।
0: हाँ जी रविंदर जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
0: क्या कहना चाहेंगे?
1: देखो जी, आज पर्यावरण दिवस है तो जी, मतलब एक दिन हम मैं बोल के चले जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, बाद में वो ही काम फिर होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जरूरत है वो काम करने की।
0: हाँ, ऐसा करें,
1: सारा दिन बोलते हैं और हम, मतलब बोलने से अब कोई काम नहीं चलेगा, अब करने की जरूरत है कि हर कोई इंसान

0: चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बूढ़ा है, उसको अपने तरीके से जो है ना वो पर्यावरण को साफ करने के लिए मदद करनी चाहिए जहाँ तक भी हो सकती है।
1: हाँ रविंद्र जी,
0: अपनी तरफ से सफाई रख सकते हैं, बूटे लगा सकते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो जिंदगी में एक लीटर भी तेल जो है जाया नहीं किया, मैंने सारी जिंदगी साइकिल पे बिताई है। और मेरे पास हमेशा ही एक थैला रहता है, तो मैं सारी चीजें उसमें डालता हूँ। मैं किसी से प्लास्टिक का लफाफा भी अगर ज्यादा जरूरत हो तो मैं लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेता
1: जी। बहुत अच्छी बात है,
0: थैले में डाल लेता हूँ। और अगर लफाफा मिल भी जाए मेरे को प्लास्टिक का
1: जी,
0: तो मैं उसको रीयूज कर करके बहुत, जब तक वो फटता नहीं ना तो तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं, मतलब रीयूज करता ही रहता हूँ। तो मतलब ऐसी जो कोशिशें हैं ना, वो जैसे पिछले दिन वर्ल्ड साइकिल डे था, वो साइकिल डे पे भी आपको जो आपने तो मना लिया ना, हमने भी मना लिया सबने, लेकिन उसकी जो मनाने की वजह यही है कि हम एक दिन ऐसा तहिया करें कि आज मैंने साइकिल ही चलाना है, आज मैंने कोई दो पहिया वाहन नहीं चलाना जिसमें कोई पेट्रोल डलता हो। ख्याल एक एक बंदा भी जो अगर इसके अमल करेगा तो 1,40,00,000 जो है अपनी आबादी है, तो उसके हिसाब से देख लो कितने फ्यूल की बचत हो सकती है
1: जी।
0: तो मतलब ये बातें तो बेशक छोटी छोटी हैं, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत दूर तक जाता है। तो अब हमको बातें कम और काम ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, हमने 20-20 मरले कई 30-30 मरले की कोठियां तो बना ली है, लेकिन कोठियों में रहने के लिए जो हमको चीज चाहिए, हवा पानी और खाना, वो हमने सारा खराब कर लिया
1: जी। तो रविंद्र जी,
0: इनको हम
1: रविंद्र जी
0: अपने हिसाब से साफ करें।
1: रविंद्र जी
0: जी,
1: आपने अपनी बातचीत के शुरू में कहा कि बोल के मैं भी चला जाऊंगा और बोल के आप भी चले जाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर वादा करते हैं, ना आप ऐसे जाएंगे ना मैं ऐसे जाऊंगा। आप भी जब जाएंगे तो जाके एक पौधा अपने माँ के नाम लगा देंगे, धरती माँ के नाम, और एक पौधा मैं भी घर जाके जहां संभव होगा गमले में या मिट्टी में कहीं धरती में लगा दूंगा। पक्का?
0: वो बात बिल्कुल आपकी पक्की है। मैंने तो
1: पहले वादा कीजिए, वादा तो कीजिए।
0: नहीं, वादा मैंने कर लिया आपसे, मैंने लगवाए भी है वैसे, ये नहीं बात
1: मैंने। नहीं, आपने कहा ना कि मैं भी बोल के चला जाऊंगा, आप भी बोल के चले जाएंगे। नहीं जाएंगे भाई मेरे,
0: नहीं
1: जाएंगे, जाके लगा देंगे।
0: करता हूं आपसे वादा, करता हूं आपसे।
1: तो ये वादा रहा,
0: करता जरूर हूं
1: जी। 50-50 वादा,
0: 50-50 नहीं, 100% वादा।
1: नहीं, दोनों का वादा 50-50% हो जाएगा, 100% हरियाली हो जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि अब काम करने की जरूरत है सबको, मतलब बातें का मतलब कम करे काम ज्यादा, तभी जो वातावरण हम अच्छी तरह कैसे इसे साथ ले सके, वरना आने वाले 10 साल में ना हमको सिलेंडर लेना पड़ेगा शुद्ध ऑक्सीजन के लिए।
1: और बातें अगर हरी भरी करेंगे, बातें अगर हरी भरी करेंगे तभी हरियाली का कोई नया रास्ता निकलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बात तो करनी पड़ेगी ना, कोई भी काम है उसके बारे में पहले सोचना तो पड़ेगा, बात तो करनी, तभी वो हम काम पूरा करेंगे।
1: देखिए, पहले सोच में हरियाली होगी
0: जी जी बिल्कुल,
1: फिर बातों में आएगी
0: जी,
1: बातों में आएगी तो धरातल पे उतरेगी,
0: बिल्कुल,
1: तो धरती हरी भरी हो जाएगी।
0: बिल्कुल, मैं वही बात।
1: शुक्रिया आपका बहुत बहुत बात करने के लिए रविंद्र जी।
0: शुक्रिया आपका भी सर।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं।
1: हेलो चंडीगढ़।
2: गुड मॉर्निंग अनिल
1: जी। जी गुड मॉर्निंग जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: मैं किरण बात कर रही हूँ।
1: हाँ किरण जी, किरण जी, हेलो।
2: हाँ जी सर। जी जी
1: किरण जी, कुफरी से बोल रही हैं?
2: जी सर बिल्कुल।
1: हाँ क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको?
2: जी बिल्कुल आ रही है।
1: बिल्कुल आ रही है। अच्छा आप थोड़ा आज मुझे लगता है कि आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है। खैर कोई बात नहीं। हाँ जी अब बताइए किरण जी।
2: सर मैं तो यही कहना चाहूंगी हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए।

0: ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखा जा सके। और सर हमें मतलब जहाँ पे भी जाना हो, हमें मतलब हम कई बार 2 किलोमीटर की दूरी में चले जाते हैं तो हम गाड़ी या मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं, तो हम ये अवॉइड करना चाहिए
1: जी। और किरण जी, जहाँ आप रहती हैं कुफरी या आसपास का जो इलाका है ना, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके की तो आन बान शान होते हैं पेड़,
0: जी सर,
1: है ना, हमारी उम्र से भी लंबे पेड़ हैं।
0: जी सर, और हमारे तो यहाँ उद्यान के बहुत पेड़ देखे जाते हैं।
1: जी, और इसी हरियाली को देखने के लिए, इसका सुख लेने के लिए पर्यटक तो दूर दूर से आते हैं हिमाचल की वादियों में।
0: जी सर, आप भी आइए कभी।
1: जरूर, और हम पर्यटकों को भी ये कहेंगे कि जब भी ये वो हसीन वादियों में जाएं, मजा लेने के लिए जाएं, आनंद लेने के लिए जाएं, तो वहां कूड़ा कचरा ना फेंकें। अपने जो भी पॉलिथीन है, जो भी अपना कचरा है, अपनी गाड़ी के एक डस्टबिन में रख लें और उसे प्रॉपर जगह पे उसका निपटान करें। जी, तो आपका जो गांव है वहां हरियाली कैसी है, क्योंकि यहां तो बर्फ बहुत पड़ती होगी ना।
0: जी सर,
1: बर्फ में तो सबको ढक जाता है, तो जब खिलने का मौसम आता है, बसंती मौसम आता है, तो उसमें आपके गांव की हरियाली की छटा कैसी रहती है?
0: सब बहुत मजेदार
1: जी,
0: देखने लायक होती है।
1: अच्छा, थोड़ा बताइए कैसे, क्या क्या, कौन कौन से पेड़ हैं आपके यहाँ?
0: हमारे सर उद्यार है और काल बोलते हैं हमारी भाषा में।
1: जी,
0: तील है, पेड़ के पेड़ होते हैं सर।
1: अच्छा, ये तो देखिए यहाँ की जो हरियाली है हिमाचल की, या किसी भी पहाड़ी इलाके की, कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, किसी भी पहाड़ी इलाके की बात करें, ये तो एक तरह का हुस्न है पहाड़ों का, है ना। और इस हुस्न को देखने के लिए, दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तो इसकी
0: खूब हाँ
1: बिल्कुल सही कहा आपने, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि कुदरत के बिल्कुल करीब रहती हैं आप।
0: हम तो कुदरत की गोद में हैं।
1: क्या बात है, तो देखिए धरती माता हमें अपनी गोद में संभाले हुए है, सहलाती है, हमारा ख्याल रखती है, तो हमें भी माँ का, उसके पर्यावरण का, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। जी,
0: तो सर मैं जब भी जाती हूँ कम से कम 3-4 किलोमीटर पैदल ही जाती हूँ।
1: अच्छा, हाँ ये तो खासियत है भी पहाड़ी इलाके के रहने वाले लोगों की,
0: 3-4 किलोमीटर पैदल रहते हैं। जी, जी, जी। कहते हैं लोग, कहते कई बार पूछते हैं हमको कि आप मरीज हो या अनमरीज हो।
1: अच्छा अच्छा,
0: क्योंकि साथ लगता नहीं है ना।
1: हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी।
0: थैंक यू सर।
1: पहाड़ों की तो एक निराली छटा है, एक अपना ही निराला ढंग रंग है, हरियाली है।

0: वेलकम बैक दोस्तों। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने टॉपिक चुना है, जब तक पेड़ पौधे वन हैं तभी तक स्वस्थ हम हैं। तो अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए हमें पेड़ पौधों के जो साथ है हमारा, उसे कभी नहीं भूलना है, छोड़ना नहीं है। ये हरा भरा साथ हमेशा रहना चाहिए। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार
0: जी। नमस्कार जी, वेलकम
1: वेलकम। थैंक यू आपका, पूरी आकाशवाणी चंडीगढ़ की टीम का और आज का विशेष दिन का भी।
0: जी
1: जी, तो मैं राकेश बात कर रहा हूँ, गुंडा गांव और तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
0: वाह क्या बात है।
1: जी, जी जी जी जी
0: जी। राकेश जी कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं और बहुत प्रयास किया था, और प्रयास तो मैंने अपने क्षेत्र धर्मशाला भी किया था, वहाँ भी यही टॉपिक था, तो फिर वहाँ नहीं लगा, तो फिर और भगवान की कृपा से नजीबाबाद लग गया, तो नजीबाबाद के बाद फिर आपके पास आ गया।
0: अच्छा, पर्यावरण के लिए प्रयास आपने जहाँ कहीं भी किया, बहुत अच्छा किया।
1: जी, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पर्यावरण के बारे में जो टॉपिक था आपके चैनल पे था, और कल जो है मैंने अयोध्या पे पांच कदम का सवाल पूछा था, तो मैंने उधर भी मैंने यही बात की पर्यावरण के बारे में, क्योंकि उन्होंने टॉपिक यही रखा था, तो और आपने भी यही टॉपिक रखा, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अलग अलग जो है आरजे जो है एक ही टॉपिक की बात करें, तो बहुत अच्छा लग रहा है बात करने में।
0: जी
1: जी जी जी जी।
0: और देखिए, इस मौके पर सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल कार जो है लॉन्च की है।
1: जी जी।
0: और केवल एथेनॉल से भी चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च की गई है।
1: जी जी जी।
0: और इससे जुड़े 5,000 पंप खुलेंगे।
1: जी जी जी।
0: और इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसानों की आय तो बढ़ेगी, साथ साथ में ऐसे वाहनों को शून्य उत्सर्जन वाहन माना जाता है। और सबसे बड़ी बात होगी राकेश जी,
1: जी, जी
0: कि इससे जो पॉल्यूशन है
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: घटेगा।
1: जी जी जी।
0: पॉल्यूशन घटेगा तो हमारा पर्यावरण बचा रहेगा।
1: तो मैं अनिल जी, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने ये बात आकाशवाणी ने जी बात भी बोलती, जैसे कि अगर हमारे जो टूरिस्ट आते हैं हिमाचल घूमने, तो मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि आप अगर आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपकी मानो कि आपकी पूरी टीम कहीं एक ही जगह पे घूमने जा रहे हैं, तो आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते, जैसे कि मानो कि अब देखो पूरे भारत में ट्रेन चली है, तो आप वो सभी जो लोग एक ही वाहन में अगर सफर करेंगे, इससे क्या होता है हमारा पर्यावरण भी बचेगा और प्रदूषण भी बचेगा, और पेट्रोल डीजल तो बचेगा ही, लेकिन लोग क्या करते हैं अलग अलग, जितने अगर मानो कि हम 7 लोग हैं,

0: तो सात लोग जो है अपने अपने घर से वाहन लेके जाएंगे, तो उसमें भी कितना जो है वायु प्रदूषण फैलता है हमारे देश में। अगर अगर मानो कि अगर एक ही फ्लोट पे जा रहे, अगर 20-25 लोग अगर एक फ्लोट पे जा रहे हैं तो आप एक ही वाहन में, जो बड़ा वाहन, तो एक ही वाहन में आप सफर कर सकते हो, इससे भी बहुत जो है पर्यावरण बच सकता। अगर हर हर आदमी की अगर ये सोच हो तो
1: बहुत अच्छी सोच है। और दूसरी बात हम आपको बताएं, आपने जैसे वाहन कम करने की बात की ना,
0: जी,
1: तो एक जो नॉइज पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण, उसकी
0: जी,
1: बहुत समस्या है। वो भी हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। लेकिन अगर हम मिजोरम के आइजोल की बात करें ना, जो आइजोल शहर है, वहां लोगों ने अपने आप एक संस्कृति को अपनाया है, वो संस्कृति को अपने जीवन में ढाला है। वो है नो हॉर्न जोन, कि हॉर्न नहीं बजाना। यह स्वेच्छा से लोगों ने किया है। यातायात जाम में वहां के जो ड्राइवर्स हैं वो बेवजह हॉर्न नहीं बजाते।
0: जी।
1: तो ये इस तरह के प्रयास है ना, छोटे छोटे प्रयास हैं।
0: जी।
1: जरूरी थोड़ा कोई हमें कहे तभी हम करें।
0: जी बिल्कुल
1: ये हमें खुद भी करना चाहिए।
0: क्योंकि हम अगर आप देखो पर्यावरण को अगर आप बचाना चाहते तो हम खुद भी करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि बेवजह हॉर्न न बजाए। कई बार हॉर्न भी जाते, कई बार मैंने ऐसा भी सुना है, कई बार मैं अपने गांव की बात करूं तो हॉर्न भी जाते और खूब जो है तेज आवाज में म्यूजिक भी जा देते और कई बार किसी को पता नहीं चलता कि देखो क्या हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा पर्यावरण का भी हमें करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है और बिजली की खपत भी हमें बचानी चाहिए।
1: और राजस्थान की बात करें ना,
0: जी
1: तो राजस्थान के अलवर में अरवरी नदी को ग्रामीणों ने जोहड़ बनाकर फिर से जीवित कर लिया है, उसे नया जीवन दे दिया है।
0: जी।
1: नदी कई वर्षों से सूखी हुई थी।
0: जी।
1: तो ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं या बात कर रहे हैं क्योंकि एक छोटा सा कदम, किसी की एक सोच जो है वो किस तरह से आपस में मिलके हम जो ये सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा वो भी हम कर लेते हैं।
0: जी।
1: तो अलवर में जो ग्रामीणों ने किस तरह से, जो वर्षों से सूखी नदी है उसको फिर से उसमें नया जीवन जो है वो बहने लगा।
0: जी।
1: और ऐसे गुजरात का एक गांव है मोढेरा,
0: जी
1: वहां पर थर्मल बिजली की पूरी तरह से जो निर्भरता है ग्रामीणों ने छोड़ दी है और पूरी तरह से सोलर बिजली से ये पूरा गांव चलता है।
0: पूरा गांव चलता है। जी।
1: तो ये भी पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत अहम बात है। ऐसी बहुत सारी
0: प्रयोग साबित हो सकता है।
1: हम लुधियाना की बात कर लें तो लुधियाना का जो बाजरा गांव है वहां पराली जलाने से पूरी तरह से मुक्त हो गया है। बाजरा गांव है लुधियाना में, गांव वाले पराली जो प्रबंधन है उसके लिए सीडर मशीनों का इस्तेमाल कर उसे मिट्टी में मिलाते हैं, जलाते नहीं है। जलाती, इस तरह के छोटे छोटे प्रयास हैं जो
0: जी।
1: तो राकेश जी, आपके गांव में हरियाली की क्या स्थिति है?
0: फिलहाल मेरे गांव में जो हरियाली का भी तो सामान्य है, बहुत अच्छी है और हमारे कई कई जो है देवदार के पेड़ भी है और जंगल भी, पहाड़ भी अभी ऊंचे हैं। हाँ, लेकिन कुछ क्षेत्र में थोड़े थोड़े काट भी है क्योंकि अब तो आदमी घर के पास रोड करने डिबरी तो बुला रहे हैं, लेकिन अभी जो है मेरा गांव जो है बिल्कुल हरा भरा है अभी तक।
1: मेरा गांव मेरा देश हरा भरा रहे, हरियाली से सजा रहे, पर्यावरण स्वच्छ रहे, यही बस हमारी कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद। हाँ।

0: हेलो चंडीगढ़ जी। तो आज हमारा टॉपिक है जब तक पेड़ पौधे वन हैं तभी तक स्वस्थ हम हैं। जी नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। और दोस्तों हम आपको बताएं कि एक छोटे छोटे जो प्रयास हैं जब वो सामूहिक स्तर पर सामने आते हैं, सामूहिक प्रयास बन जाते हैं, तो फिर चारों तरफ बहार ही होती है। कर्नाटक की बात करें, बारिश के पानी को सीधे सूखे बोरवेल में उतारने के लिए एक जो व्यक्ति है वहां के अयप्पा मसागी ने लोगों को जागरूक किया। इससे हुआ ये कि 26,000 हेक्टेयर सूखी जमीन वेटलैंड में तब्दील हो गई। तो जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग के सिस्टम को हमें अपनाना चाहिए, घर में लगाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की बात करें तो यहां महिलाओं के समूहों ने कचरा प्रबंधन संभाला, इससे शहर लगभग डंपिंग ग्राउंड से मुक्त हो गया और साफ हो गया। और इसके साथ साथ पर्यावरण भी अच्छा हो गया और महिलाओं को रोजगार भी मिल गया। दिल्ली के राकेश खत्री की बात करें तो इन्होंने हजारों घोंसले बनाकर गौरैया जैसे जो पक्षी हैं जो विलुप्त हो रहे हैं उन्हें शहरों में लौटने का एक प्रयास किया है, कोशिश की है। और देश में 7 लाख से ज्यादा घोंसले वो लगा चुके हैं। तो हमें इस तरह के जो प्रयास हैं वो करने चाहिए। केवल मन बनाने की बात है, वो अपने आप हमारी आदत में शामिल हो जाएगा, क्योंकि बिना पर्यावरण के हमारा जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण कैसा? हरा भरा, खुशहाल, स्वस्थ। हेलो चंडीगढ़
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: अनंत राम ठाकुर बोल रहा हूँ सोलन से।
0: एक बार फिर से नाम बता दीजिए अपना।
1: अनंत राम ठाकुर सोलन से बोल रहा हूँ जी।
0: जी फरमाइए साहब।
1: हाँ, हमें सबको संकल्प लेना चाहिए कि हमें एक पेड़ जहाँ भी खाली जगह मिले वहां लगा देना चाहिए।
0: जी
1: और दूसरा, जो हम जंगलों में लोग जो है ना आग लगाते हैं, इसको नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि
0: जी
1: अभी रिसेंटली में यहाँ बड़ोग में जो है, सोलन में जो है, लोगों ने जंगल में आग लगा दी, जिससे
0: जी
1: पर्यावरण में काफी नुकसान होता है और जो वन्य जीव जंतु है उनका भी बहुत बड़ा जो है नुकसान पहुंचता है उसको।
0: जो वन संपदा जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचता है।
1: हाँ, और उसके के साथ साथ पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
0: जी तो गर्मी के मौसम में तो वैसे ही जंगल में आग लगने का डर बना रहता है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: कई बार मानवीय भूल होती है, लापरवाही होती है, कई बार ये
1: लापरवाही
0: कई बार ये
1: किसी
0: पत्ते
1: का तो
0: आपस में
1: लापरवाही
0: टकराते
1: नहीं
0: हैं
1: करनी
0: तो भी आग
1: चाहिए।
0: लगती है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तो कोई ना कोई कारण होता है, तो इन कारणों की तरफ हमें अब गौर करना है,
1: हाँ
0: निश्चित
1: जी,
0: रूप
1: हाँ
0: से
1: जी,
0: करना है और
1: हाँ जी,
0: अपनी
1: हाँ
0: वन
1: जी,
0: संपदा को बचा के रखना है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी
1: इससे जो है ना पर्यावरण भी बचेगा और हमारे जीव जंतु भी बचेंगे।
0: तो आपके गांव में हरियाली की क्या स्थिति है?
1: हरियाली तो बहुत अच्छी है,
0: जी कौन
1: लेकिन
0: कौन से
1: इस
0: पेड़
1: तरह
0: लगे
1: से
0: हैं?
1: जो जंगलों में आग लगती है तो उससे पेड़ों को भी नुकसान होता है और जीव जंतुओं को भी होता है। हाँ
0: तो आपके यहाँ खेती किस तरह की होती? खेती होती है आपके यहाँ?
1: जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: क्या खेती
1: हाँ
0: करते
1: खेती
0: हैं?
1: करते हैं। यहाँ तो टमाटर वैसे कई बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं
0: जी
1: जी, और दूसरे हमारे यहाँ मक्की की फसल भी होती है, गेहूं भी होता है,
0: जी
1: चावल भी होते हैं,
0: जी

0: तो इस तरह की फसलें तो उगाई जाती है।
1: बहुत अच्छा लगा। और आपके गांव का नाम?
0: गांव का नाम, मैं तो सोलन में रहता हूँ।
1: अच्छा,
0: शांति है जगह का नाम।
1: अच्छा अच्छा, सोलन शहर में रहते हैं आप?
0: हाँ, शांति है, थोड़ा सोलन से दूर है
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोलन जैसे शहर में भी हरियाली की बहुत आवश्यकता है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: क्योंकि यहाँ भी कंक्रीट के जंगल काफी हो गए हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो ऐसे में इन शहरों को, जो ग्रामीण इलाका है, पहाड़ी वो तो है ही है,
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जो शहरी इलाका है वहाँ भी हरियाली को बरकरार रखने के लिए हमें
0: जहाँ भी खाली जगह मिले तो हाँ, कहीं पेड़ लगा,
1: हर संभव कोशिश करनी चाहिए।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: शुक्रिया जी बात करने के लिए आपका।
0: थैंक यू सर, थैंक यू।

हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज बात कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर कि जब तक पेड़ पौधे वन हैं तभी तक स्वस्थ हम हैं। हमारी हंसी खुशी, हमारी खुशहाली, हमारा स्वास्थ्य हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। तो पर्यावरण की संभाल घर से शुरू होकर समाज तक जाती है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी काम करते हैं, हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे किसी प्रयास से हमारे पर्यावरण को हरा भरा बनाने में योगदान मिलता रहे। कोई ऐसा काम ना हो जिससे पर्यावरण जो है वो खराब होता हो। तो आज के दिन हमें ये प्रण लेना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, क्योंकि अभी जब हमने इस प्रोग्राम में आपसे कुछ ऐसे लोगों की बातें साझी की कि जिन्होंने अपने अपने प्रयास से किस तरह से जागरूकता बढ़ाई और उनका अपना निजी जो प्रयास है वो सामूहिक प्रयास बन गया और वो हरियाली में बदल गया। जहाँ सूखा था वहाँ हरा हो गया, और जहाँ नदियाँ सूखी थीं वो नदियाँ जो हैं उनमें फिर से पानी बहने लगा। किसी ने सोलर ऊर्जा पर काम किया, किसी ने कचरा प्रबंधन पर काम किया। तो इस तरह के आप देखेंगे कोई भी ग्रुप हो, कोई भी एनजीओ हो, व्यक्तिगत तौर पर भी जब आदमी इस तरह की दिशा में काम करता है तो वो दिशा उसे हरियाली की तरफ लेकर जाती है।

तो साथियों, ये तो था आज का हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हमने टॉपिक चुना कि जब तक पेड़ पौधे वन हैं, तभी तक स्वस्थ हम हैं। प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया, अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने आसपास को हरा भरा बनाते रहिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं, आप सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं राखी आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमें फोन के और मैसेज के द्वारा हमें सुझाव देते हैं और हमें उत्साहित करते हैं। अपने सुझाव हम तक पहुँचाने के लिए आप हमें फोन कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं। तो श्रोताओं, आज फिर हम आपके लिए एक और नई कहानी को साथ लेकर आए हैं। हमें आशा है आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आएगी। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर जरूर नोट करें। हमारा फोन नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ श्रोता, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
0: श्रोताओं, हम अपने उन श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं तथा लगातार हमसे फोन के द्वारा जुड़े रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, दसवीं बोर्ड के बाद सबसे अहम समय आता है बच्चों के लिए, जब उन्हें अपने भविष्य संबंधी विषयों का चुनाव करके आगे

0: की पढ़ाई करनी होती है। अधिकतर बच्चों के साथ ये समस्या होती है कि वे नहीं समझ पाते कि उन्हें कौन सा विषय लेना चाहिए। वे या तो दोस्तों को देखकर या घर वालों के दबाव में या ज्ञान की कमी में आकर कोई भी विषय ले लेते हैं और फिर वे उसमें अच्छे से पढ़ नहीं पाते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर उन्हें 12वीं बोर्ड में कम नंबर, अच्छा कॉलेज ना मिलना और जिंदगी भर इन्हीं सब तकलीफों से गुजरना पड़ता है और वे किसी भी क्षेत्र में स्थिर नहीं हो पाते। 11वीं में विषय लेते समय बच्चों को पूरा ज्ञान व सही से समझ बूझ कर विषयों का चयन करना चाहिए। निर्णय लेने के इस चरण में ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में सचेत और जागरूक रहें, ताकि कक्षा 11 में आप खुद को और अधिक उन्मुख करने के लिए सही स्ट्रीम ले सकें। जैसे ही आप कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा पूरी करने के बाद राहत की सांस लेते हैं, आप एक महत्वपूर्ण निर्णय के चौराहे पर होते हैं। कक्षा 11 में कौन सा विषय स्ट्रीम चुनना है जो एक सफल करियर की ओर ले जाएगा, ये उन छात्रों के लिए कठिन समय हो सकता है जो अभी तक अपने करियर की महत्वाकांक्षाओं या उन तक पहुंचने के तरीके के बारे में नहीं जानते हैं और बड़ी ही असमंजस्य में फंसे होते हैं। आज की कहानी के माध्यम से हम सुनेंगे कि किस प्रकार सही विषय का चयन किया जाए। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर।
1: हेलो ऋषभ।
2: हाँ हेलो राहुल, कैसा है?
1: मैं अच्छा हूँ, तू बता कैसा है?
2: हाँ यार, मैं भी अच्छा हूँ, बस थोड़ा डर लग रहा है।
1: डर क्यों? किस बात का डर?
2: अरे भाई, तुझे नहीं पता आज 10वीं का रिजल्ट है।
1: अरे यार, मैं तो भूल गया, सुनीता और गीता भी भूल गए क्या? रुको, मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ।
2: हाँ ठीक है भाई, कर ले।
1: हेलो गीता। हेलो सुनीता, कैसी हो?
3: मैं अच्छी हूँ यार, ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ हुआ है क्या?
4: आज रिजल्ट है, अभी पता नहीं क्या होगा।
2: अच्छा, तो तुम्हें भी याद है?
1: अरे सुनीता, तो किसी बात की चिंता कर रही है? तो सबसे ज्यादा अच्छी है पढ़ाई में और हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है।
4: पर बोर्ड में तो डर लगता है ना यार, और फिर ये भी नहीं पता आगे क्या करना है और 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है।
3: हाँ यार सुनीता, सही बोल रही है।
1: सुनो, एक काम करते हैं, तुम सब मेरे घर आ जाओ, रिजल्ट के समय एक साथ रिजल्ट देखेंगे और यहीं पर बात भी कर लेंगे।
2: हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है, बिल्कुल सही है। फिर शाम को मिलते हैं राहुल के घर।
5: राहुल, दरवाजा खोल।
1: अरे आ रहा हूँ। आ गए तुम लोग?
3: नहीं, अभी तो हम रास्ते में हैं और आधा घंटा लगेगा।
2: 5 मिनट में रिजल्ट है और तुम लोगों को मजाक लग रही है?
1: परमेश्वर पास करा देना बस। वाओ, मेरी तो 79 बनी है।
2: वाओ, और मेरी 82%।
3: ओ माय गॉड, मेरी तो 90% बनी है।
4: मेरी 94 बनी है।
1: अब तो पार्टी बनती है, कहा था ना सुनीता, तू ही अव्वल करेगी।
3: अब किसी ने ये भी सोचा है कि आगे भी क्या करना है? अब
1: एक काम करते हैं, हम सब कॉमर्स लेकर एक ही स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं।
4: यार मजाक की बात बिल्कुल नहीं है ये, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ही गंभीर विषय है।
3: सुनीता सही बोल रही है, हम कौन सा विषय लेते हैं उसी पर हमारी आगे की चीजें भी निर्भर करती हैं।
1: तो क्या करना है बताओ बताओ।
4: विषय रुचि के अनुसार और आगे जाकर हमें भविष्य में क्या करना है उस हिसाब से लेना चाहिए।
2: हाँ, तुझे तो बड़ा पता है।
3: हाँ ऋषभ, सुनीता बिल्कुल सही बोल रही है।
1: हाँ तो हमें भी बता, अच्छी बात है, हम एक ही स्कूल में ले लेंगे।
4: हाँ हाँ जरूर, हम सब एक ही स्कूल में जाएंगे।
1: चल अब बता, क्या कर रही थी, तूने ये सब कहाँ से सीखा, और ये भी बताना हमको।
4: मैं अपनी दीदी से सीखी, इंटरनेट से ही सब कुछ देखती हैं दीदी, और इसलिए सीखती रहती हूँ, और मुझे इसलिए कुछ कुछ बातों के बारे में पता चलता रहता है। जैसे कि लॉयर बनना है तो LLB करनी पड़ती है, LLB आर्ट्स और कॉमर्स दोनों से हो जाती है, और अगर टीचर बनना है तो कोई भी स्ट्रीम से हम ग्रेजुएशन करने के बाद BEd करके टीचर बन सकते हैं, और MEd और नेट की पढ़ाई कर हम कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हैं।
3: हाँ यार, मैं यही सोच रही थी कि मुझे टीचर बनना चाहिए।
1: तुझे तो लेक्चर देना पसंद है।
4: हाँ ये बहुत अच्छा है, और इसके अलावा CA और CMA सब कॉमर्स के सब्जेक्ट से हो जाता है।
1: और अगर मेडिकल लाइन में जाना हो तो इसके लिए क्या करना?

0: होता है।
1: मेडिकल लाइन में जाने के लिए साइंस लेनी पड़ती है, उसमें भी अलग अलग विकल्प होते हैं कि हमें कौन सी मेडिकल लाइन में आगे जाना है। मतलब कि हमें 12वीं के बाद अगर नीट का पेपर क्लियर करना पड़ता है तो हम उसके बाद होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डॉक्टर लाइन में हम नीट के बाद जा सकते हैं। BCA, MCA ये दोनों ही कंप्यूटर से जुड़े हुए कोर्स हैं और इसमें बहुत ही अच्छा भविष्य है। आजकल सभी युवा ज्यादातर यही पसंद करते हैं क्योंकि हमारी दुनिया में सब कुछ आजकल कंप्यूटर आधारित हो चुका है। विशेषकर हमारे पास 3 विषय विकल्प होते हैं 11वीं कक्षा के लिए, जो कि तुम्हें पता ही होते हैं, आर्ट्स यानी कि कला, इसे आजकल ह्यूमैनिटीज के नाम से भी जाना जाता है, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, साइंस यानी कि विज्ञान।
0: तो ये सब क्या सिर्फ 11वीं तक ही होते हैं? तो इसके अंदर कुछ विषय और भी होते होंगे, उसके बारे में कुछ बताना अगर तुझे पता हो तो।
1: हाँ मुझे पता तो जरूर है, पर कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे जितना पता है ना मैं तुम लोगों को बता दी हूँ। पहले अपन विज्ञान के बारे में बात करते हैं। विज्ञान स्ट्रीम में मुख्य विषय के रूप में भौतिक, रसायन विज्ञान और वैकल्पिक विषय में गणित या फिर जीव विज्ञान आते हैं। विज्ञान के छात्र वाणिज्य से अर्थशास्त्र, मानविकी से मनोविज्ञान जैसे अन्य स्ट्रीम से भी वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। विज्ञान स्ट्रीम में चिकित्सा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक और शुद्ध विज्ञान जैसे कई आकर्षक पारंपरिक करियर विकल्प उपलब्ध हैं। स्कूल में विज्ञान चुनने वाले छात्र यदि विज्ञान से बाहर निकलना चाहते हैं तो स्नातक अध्ययन के लिए वाणिज्य और मानविकी स्ट्रीम भी चुन सकते हैं।
2: अब जरा थोड़ा सा कॉमर्स के बारे में भी बता दें ताकि मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए।
1: अच्छा ठीक है, मैं सेकंड के बारे में बताती हूँ, कॉमर्स मतलब कि वाणिज्य स्ट्रीम। कॉमर्स में मुख्य विषय के रूप में बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंट्स शामिल हैं और गणित वैकल्पिक। वित्त, लेखा, निवेश बैंकिंग और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के बीच गणित के साथ कॉमर्स एक लोकप्रिय विकल्प है।
3: सुनीता हमें पता है हम तुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, पर यार मुझे भी जरा सा कला वर्ग के बारे में अच्छे से बता देना, मेरी भी मदद हो जाएगी।
1: बिल्कुल गीता, कला स्ट्रीम में मुख्य विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञान शामिल होते हैं। ऐच्छिक विषयों में गणित, अर्थशास्त्र आदि शामिल हैं। मानविकी के छात्र मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता, लेखन, फिल्म निर्माण और सामुदायिक सेवा और शिक्षण जैसे क्षेत्रों में करियर चुन सकते हैं।
2: तू तो बहुत तेज निकली यार, तू तो सब पता करके बैठी है।
1: नहीं यार ज्यादा कहाँ, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जानती हूँ।
2: चल रही, तुझे तो सब पता है, अब कौन सा सब्जेक्ट लेने की सोच रही है तू ये भी बता दे।
1: मैं विज्ञान लेने की सोच रही हूँ।
2: सुनीता की बेस्ट फ्रेंड आप ही बता दीजिए, आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगी?
3: मैं तो कला वर्ग लेने की सोच रही हूँ।
2: भाई इन दोनों तो अपना अपना सोच रखा है, सारी तैयारी करके बैठे हैं, तू बता अपन क्या करें?
4: भाई अपन कॉमर्स ले लेते हैं।
2: ठीक है, नहीं हुई कॉमर्स तो भाई कला वर्ग में चले जाएंगे, हमारा क्या है, हम तो लड़के हैं, सब सह लेते हैं।
3: हाँ तुम दोनों तो बस हमेशा मजाक ही करते रहो।
2: हाँ और तुम दोनों पढ़ते ही रहो।
4: भाई कह तो ये दोनों सही रही है, मजाक से हटकर अब अपन भी देख लेते हैं क्या कर सकते हैं, इन दोनों का तो सब फाइनल है।
2: ठीक है भाई अपन भी अपना देख लेंगे, मेरे पापा तो विज्ञान लेने की बोल रहे हैं, शायद वो मानेंगे नहीं, मुझे विज्ञान ही लेने पड़ेगी, वरना कॉमर्स लेने की सोच रहा था मैं तो।
4: तो भाई जो तुझे पसंद है वही सब्जेक्ट लेना।
2: अरे भाई तू जानता है ना पापा को, वो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं बात करके देखता हूँ।
1: नहीं राहुल, तुझे जिस भी विषय में रुचि है ना वही विषय लेना। मेरी दीदी ने कहा था कि सब्जेक्ट छात्र को अपनी इच्छा के और रुचि के अनुसार लेना चाहिए, घर वालों के दबाव में या फिर दोस्तों को देखकर नहीं।
3: हाँ फिर अंकल नहीं माने तो हम उनसे बात कर लेंगे, पर विषय तो तू अपने मन का ही लेना जो कुछ तू कर सके।
4: अरे यार अब बस भी करो, अभी तो रिजल्ट ही आया है, अभी से इतनी टेंशन, अरे अभी तो पार्टी का टाइम है, सब कर लेंगे ना बाद में।
2: हाँ ऋषभ तू सही बोल रहा है, चलो जल्दी से जाकर अपने घर रिजल्ट बताते हैं और अपने सारे दोस्तों से भी बात करते हैं।
4: हाँ यार तू सही बोल रहा है भाई।
1: हाँ चलो चलो।
3: तो फिर चलो सबसे पहले मेरे घर चलते हैं, मेरी मम्मी ने तो खीर बना के रखी है।
2: तो चल ना, इंतजार किस बात का कर रही है।

0: कैसे हो तुम सब? अच्छे हैं यार, बस अब छुट्टियां खत्म होने वाली है तो दुख हो रहा है।
1: हाँ यार, और थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है।
2: तुम सबका पक्का हो गया? कौन कौन सा विषय ले रहे हो सब?
0: हाँ, कॉमर्स ही ले रहे हैं। हाँ, मैं तो कॉमर्स ही ले रहा हूँ।
1: और मैं कला वर्ग यानी आर्ट्स ले रही हूँ।
3: यार मुझे तो कॉमर्स लेनी है, लेकिन मेरे पापा मान ही नहीं रहे, बोल रहे हैं विज्ञान ले विज्ञान।
2: क्यों?
3: क्योंकि वो चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं।
1: ऐसे नहीं होता है यार, अंकल को समझाना।
0: वही तो, जबरदस्ती से थोड़ी विज्ञान पढ़ लेगा अगर तेरा मन ही नहीं है तो।
2: राहुल, मुझे अंकल से बात करनी है। क्या वो अभी घर पर होंगे?
3: नहीं, वो अभी घर पर नहीं है यार।
2: ओके, पर तू समझा अंकल को और एक बार और बात करके देख उनसे।
3: हाँ ठीक है, आज मैं उनसे बात करके उनको मनाने की कोशिश करता हूँ।
2: हाँ, और टेंशन मत ले, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, पर हमारी रुचि किसमें है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या बनना चाहिए, ये हमें उन्हें ही समझाना होगा। और जब हम सही तरीके से उन्हें अपनी बात समझाते हैं तो वो जरूर मान जाते हैं।
3: तू सही कह रही है सुनीता, मेरे पापा भी जरूर मान जाएंगे, और मम्मी तो वैसे भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है।
0: तो बस फिर अब सबका फाइनल हो गया है, मैं और राहुल कॉमर्स ले रहे हैं और गीता कलावंत और सुनीता तुम विज्ञान ले रही हो।
1: हाँ, बस अब पास के किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं सब।
2: हाँ
3: तो बताओ फिर कब चलें?
2: सोमवार को चलते हैं, तब तक सब अपने अपने घर पर बात भी कर लेंगे।
1: चलो ठीक है फिर।
0: ओके चलो बाय।
2: हाँ हाँ चलो, बाय बाय
1: बाय।
4: तो श्रोतो, जैसे कि हमने आज के कार्यक्रम में देखा कि विषय चयन का निर्णय छात्र का स्वयं का होना चाहिए, वह उन्हें अपने विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि छात्र अपनी इच्छा रुचि व मन से अपने करियर में आगे बढ़ सके और एक अच्छा करियर बनाने में सफल रहे। तो श्रोतो, आप भी इसी तरह जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम हमारी बेड़ियां को। अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं और हमें पत्र भी भेज सकते हैं।
5: नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955।
4: हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। अब मैं राखी आपसे विदा लेती हूँ, हम फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय एक नई कहानी और एक नई पहल के साथ। तब तक के लिए मुझ राखी की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हमारी बेड़ियां, FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। श्रोताओं, आज दिन है शुक्रवार और आज के रोज इस समय हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। तो लीजिए प्रस्तुत है प्रोग्राम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं शालिनी। और दोस्तों, कैसे हैं आप भाई? उम्मीद करते हैं कि इंतजार में होंगे कि कब हम आएंगे इस कार्यक्रम में और आपके गीतों की, फरमाइशों की जो झड़ी है वो लगेगी। तो हम तैयार हैं आपके गीतों के साथ और आपसे एक ही गुजारिश है कि जब भी आप अपनी फरमाइश भेजते हैं, हिंदी में अगर आप लिखकर भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और थोड़ा जल्दी अपनी फरमाइश भेजेंगे तो कार्यक्रम में आपका गीत, आपकी फरमाइश शामिल करने का मौका जो है थोड़ा सा अधिक जो है वो बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले गीत के साथ, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत गीत है। नील कमल फिल्म का गीत है। इसे सुनने की फरमाइश हमें भेजी है पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा।

परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से हमारे श्रोता हैं अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। आप सभी ने सुनना चाहा है अनोखी अदा फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद योगी रफी के युगल स्वरों में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम में, जिसका नाम है म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आप अपने रेडियो सेट के साथ साथ हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं अपने फोन पर न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करके। और चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं अनोखी अदा फिल्म का गीत, माफ कीजिएगा, झुक गया आसमां फिल्म का गीत, जिसके लिए आज हमें फरमाइश भेजी है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर है। विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, सेक्टर 18, जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा से। और आपने सुनना चाहा है याराना फिल्म का ये गीत।

म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं बाजार फिल्म का गीत, जिसे सुनने की फरमाइश हमें भेजी है दुदला मंडी अम्बाला कैंट से ललिता पाल, हुकम चंद, ईशांत पाल, निशांत पाल ने। साथ ही आज हमें मैसेज मिला है अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जस्मीन सकीला, SNASMA, हिना, राजिया, सुल्ताना अंसारी और इनका पूरा परिवार। और उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखकर भेजा है, तो थोड़ा सा पढ़ने में हो सकता है कहीं गलती हो गई हो। तो आप सभी की फरमाइश पर हम सुनवा रहे हैं बाजार फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। कार्यक्रम में अब बारी आ गई है अनुरोध फिल्म का गीत सुनने की, जिसकी फरमाइश आज हमें भेजी है विजय तनवर और ममता ने मुंडी खरड़ से।

दो आंखें 12 हाथ। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आप हैं दत्तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। साथ ही आज हमें फरमाइश आई है, ये भी छत्तीसगढ़ के ही श्रोता हैं, आप हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

हाथी मेरे साथी। इस फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश हमें आई है सेक्टर 9 पंचकुला से। भेजने वाले हैं रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी और देवांशु गुलाटी। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत।

और श्रोताओं, अब हम उन श्रोताओं के नाम भी शामिल कर रहे हैं जिनके गीत हम शामिल नहीं कर पाएंगे। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसिला जिला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा और समस्त सोनगरा परिवार। और राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ के आप श्रोता हैं। और साथ ही शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु। और साथ ही हमारे श्रोता हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू। गांव सुल्लर जिला पटियाला से सनी कंबोज और विकास मोर भूडियो से साथ हैं अश्मित मोर भी, इन्होंने भी हमें आज मैसेज भेजा है। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रितेश संघई और पूरा संघई परिवार। और गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी ने जिस गीत की फरमाइश भेजी है वो हम पहले ही सुनवा चुके हैं, झुक गया आसमान फिल्म का गीत। और रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, आपका भी हमें मैसेज मिला। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें मैसेज किया है। साथ ही हनुमानगढ़ राजस्थान से सुल्तान सिंह तरार, कपिल देव तरार, हिमानी जाखड़, आपका भी हमें मैसेज मिला है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले गीत की ओर बढ़ते हैं जो है सागर फिल्म से। इसकी फरमाइश हमें आई है सेक्टर 9 पंचकुला से आशु चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा की। किशोर कुमार की आवाज़ में सागर फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में तेरी कसम फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। संतोष खडसे और विनोद खडसे की फरमाइश पर यवतमाल महाराष्ट्र से आप हमारे श्रोता हैं।

0: और श्रोताओ, इसी गीत के साथ अब आज का म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम होता है संपन्न। शालिनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 12 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे।

0: सकेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, अब समय हो गया है कार्यक्रम यादों की महफिल का, जिसे हम रिले करेंगे विविध भारती मुंबई से।
3: लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म मन की आंखें।

ममता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं, ज्यादा फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ?
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा,
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो?
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
2: सखी सहेली।

जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा

विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

बामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर।

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रही हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 1 बजने को है, लीजिए अब सुनिए आज हमारे केंद्र से सुनवाए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी और उनका प्रसारण समय। कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद यानी 1:05 पर आप सुनेंगे पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार होंगे पंजाबी में, जिन्हें हम अपने जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। एक बजकर 15 मिनट पर आप सुना करते हैं फिल्म संगीत।

सुरीला सफर इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 1:30। 2 बजे सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष। 2:15 पर हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

2:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे का। सखियों का अपना कार्यक्रम सखी सहेली आप सुना करते हैं दिन में 3 बजे। पिटारा खुलेगा शाम 4 बजे और आज के पिटारा में होगी गीतों भरी कहानी। आज सुनिएगा लक्ष्मी महावीर श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया। वाचक स्वर नेहा शर्मा का रहेगा। शाम 5:05 पर सुनेगा फिल्म संगीत। शाम 5:20 समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का और एक और प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं 5:30 पर।

प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में, जिन्हें हम अपने जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 पर श्रवण कीजिए कुछ शब्द कार्यक्रम अमृत वाणी में। फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जयमाला लेकर हाजिर होंगे शाम 7:00। 7:45 पर होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। हवा महल में रात 8:00 आज की प्रस्तुति रहेगी झलकी जरा सी आंख लग गई।

8:45 पर हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 9 बजे समय रहेगा कार्यक्रम आपके लिए का।

आज के फनकार कार्यक्रम आप सुना करते हैं रात 9:30 पर और आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर।

और सुरसांझ कार्यक्रम का समय रहता है रात 10:30। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी और उनका प्रसारण समय। इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। और अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसमें पहले हमारे केंद्र से हिंदी में और उसके बाद पंजाबी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है।
1: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल के निर्माण का जिम्मा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम को सौंपा है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि इस अत्याधुनिक और भव्य अस्पताल का निर्माण गुरुग्राम की पुलिस लाइन के समीप किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी और विशाल स्वास्थ्य परियोजना पर लगभग 1054 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम पूरे भवन के निर्माण कार्य की देखरेख करेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अस्पताल निर्माण के संबंध में अन्य औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अस्पताल के बुनियादी ढांचे को दो अलग अलग चरणों में तैयार किया जाएगा। प्रथम चरण में इस अस्पताल को 400 बेड की क्षमता के साथ तैयार किया जाएगा, ताकि स्थानीय मरीजों को तुरंत आधुनिक इलाज की सुविधा मिल सके। इसके बाद अगले चरण में अस्पताल की क्षमता 600 बेड करने के लिए अतिरिक्त संरचना का निर्माण किया जाएगा। जींद पुलिस ने सफेदों के क्षेत्र में 25 मई को हुई रंगदारी, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उप पुलिस अधीक्षक ऋषभ सोढ़ी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी तपन के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरे आरोपी गोवर्धन को मौके पर ही काबू कर लिया गया। पुलिस ने तपन के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल तथा दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने उनकी कार को भी कब्जे में ले लिया है। आरोपियों द्वारा की गई वारदात की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया,
2: 25 मई को पानीपत सफेदों रोड पर 6-7 अज्ञात व्यक्तियों ने घुसकर बादल सहनी ढाबा के जो मालिक के साथ मारपीट करी थी और ढाबे में तोड़फोड़ करी थी, और इसके अलावा उन्होंने उनसे 10,000 रुपए

0: कंपनी भी मांगी थी और इस कंटेक्स्ट में एक एफआईआर थाना सफीदे में 79 नंबर जो है वो दर्ज करी गई थी।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की 12 फुट चौड़ाई की सभी सड़कों को अगले वर्ष मार्च तक 18 फुट चौड़ा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क विभाग के अगले 5 साल की कार्य योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए सड़कों का अच्छी हालत में और समुचित चौड़ाई का होना आवश्यक है। यह कार्य इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि बनाई जा रही सड़कों की अच्छी गुणवत्ता, साइन बोर्ड, बर्म व सफेद पट्टी लगवाना सुनिश्चित करें। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत प्रदेश के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को गुजरात में श्री सोमनाथ मंदिर के दर्शन करवाने के लिए 8 जून को कुरुक्षेत्र से एक विशेष रेल रवाना होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इच्छुक और पात्र श्रद्धालु आगामी 6 जून तक सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। चयन प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीटेक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई गई है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं यादविंदर सिंह तो प्रदेशक खबरां सुनो। अज विश्व वातावरण दिवस है। यह दिन 1973 तो संयुक्त राष्ट्र वातावरण प्रोग्राम तहत धरती उत्ते जीवन बचाने बारे जागरूकता पैदा करने लई हर साल 5 जून नूं मनाया जांदा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उपराष्ट्रपति श्री CP राधा कृष्णन ने हरेक नागरिक नूं आने वाली पीढ़ियां लई स्वच्छ सेहतमंद अते खुशहाल भविख बनाने लई इकट्ठे काम करन दा सद्दा दित्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वातावरण दिवस उत्ते राष्ट्र नूं वधाई दित्ती है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम वर्गिया पहलकदमिया ने हर साल लगभग 1,19,000 हेक्टेयर जंगलात कवर जोड़न च अहम योगदान पाया है। केंद्रीय वातावरण जंगलात ते जलवायु परिवर्तन मंत्री भुपिंदर यादव ने देशवासियों नूं जलवायु अते भविख लई कुदरत तो प्रेम नाल लैंदे रहण दे संकल्प नूं दोहराउण दी अपील कीती है। विश्व वातावरण दिवस के मौके उत्ते आज पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने भी लोक भवन में बूटे लाने की मुहिम की अगुवाई की। यह पहल देशव्यापी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम तहत की गई है। इस मौके संबोधन करदे राज्यपाल श्री कटारिया ने कहा कि वातावरण की सुरक्षा सांझी जिम्मेवारी है। उन्होंने नागरिका खास करके नौजवान पीढ़ी में बूटे लाने और संभाल नाल संबंधित सरगर्मियों में हिस्सेदारी लेने का सद्दा दिता। पंजाब राज महिला कमीशन ने लुधियाने में 9 कुड़ियों के लापता होने की रिपोर्टों का अपने पद्धर से नोटिस लिया है और जांच के वेरवे समेत रिपोर्ट तलब की है। चेयरपर्सन राजमानी गिल की अगवाई वाले कमीशन ने एक हुक्म विच लुधियाना पुलिस कमिश्नर 8 जून तक इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने लिए कहा है। अमृतसर पठानकोट राष्ट्रीय हाईवे उत्ते आज सवेरे माता वैष्णो देवी तो श्रद्धालुओं को वापस लेके परत रहा चार पहिया वाहन बटाला नेड़े उद्दोवाल अड्डे उत्ते हादसा ग्रस्त हो गया। गुरदासपुर तो साडे पत्रकार ने दस्या है कि यह हादसा उस वेले वापरिया जदों उद्दोवाल अड्डे उत्ते एक टिप्पर अचानक पक्की सड़क तो कच्चे पासे वाले उतर गया अते पिछों आ रहा टेंपू ट्रैवलर इस टिप्पर नाल जा टकराया। हादसे दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है अते 14 श्रद्धालु जख्मी हो गए ने। सारे श्रद्धालु मानसा इलाके दे दसे जा रहे ने। पंजाब पुलिस ने एक दिन पहला विदेश च रहिंदे अतवादी दे 2 साथियों नूं गिरफ्तार करके उन्हां कोल लगभग 2.5 किलो RDX आधारित IED बरामद किया सी। इस संबंध में 4 होर मुलजमान नूं गिरफ्तार किया गया है। इन्हों के कब्जे में 5 पिस्तौल, 1 किलो तो वध हैरोइन, नशा

पहला गीत था बॉम्बे फिल्म से संगीत ए आर रहमान का, गीत था महबूब का और गीत गाया था उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, जीवी प्रकाश और शारदा ने। और ये गीत हमने लिया है और प्यार हो गया फिल्म से उदित नारायण की आवाज में। जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीत नुसरत फतेह अली खां का।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के गाए इसी गीत के साथ अब आज का फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। और श्रोताओं, आइए अब आपको ले चलते हैं विविध भारती मुंबई आगे के कार्यक्रमों के लिए।

दिल्ली का ठग फिल्म का गाना, आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी, आज की इबारत से समझ में आ रहा है। भाई अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए।

एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें, लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी ही लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नजारे हैं। बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

फेनिल झरने सुंदर कुदरती नजारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से, जरा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे नदी तालाब ही तो है, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ है, गाँव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार। गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो।

मेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। हंसरे जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई, जहां नीले अंबर संग अटखेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थी जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सबके सब कहां खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहां हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहां पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियां हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकालकर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी जरा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, हंसराज जयपुरी की बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी में लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़े और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार संगीतकार का नाम जरा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदे बरसने लगी की गाना, और नील गगन की छाओ में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन ढाए, ये वाला गाना भी लिखा है जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफर में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है, तो आप बताइए क्या था। हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गारे में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

दिल कहे देखता ही रहूं मैं, सामने बैठ कर ये अदाएं हर दिल कहे, दिल कहे देखता ही रहूं मैं, सामने बैठ कर ये

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफर। ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 31वीं कड़ी।

बंगाल में पद्मा और मेघना इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी गिरामी नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े उत्साह से शामिल होने के लिए बारिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कवि भी थे। बारिसाल के इस अधिवेशन के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कविता रची थी। आए रे सब भारतवासी, आए सब मिले, प्रणामी भारत माता।

आओ सब भारतवासी आओ सब मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्री राम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंग बंग विरोधी आंदोलन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गीत लोग गाने लगे थे।

अपनी एक और कविता में अंतिम पंक्ति में वंदे मातरम शब्दों के साथ वे लिखते हैं, भैया देश का ये क्या हाल, खाक मिट्टी और जौहर होती सब, जौहर है जंजाल, बोलो वंदे मातरम।

0: अधिवेशन विस्फोटक होगा इसका अंदाजा लगते ही बंगाल के गवर्नर फुलर ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने और वंदे मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाव से बारिसाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
2: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
1: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,
3: मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, चाहे इसके लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा। इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
1: बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारिसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
4: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर यह पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहाँ के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए।
0: परंतु ये सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि, हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
1: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए। इस अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष

बरिस्टर अब्दुल रसूल सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे। जुलूस में युवकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए, मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार फुल्लर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्थी भीड़ पर हमला

इस हमले के लिए फुलर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिसाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से फुलर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। उसके साथ ही मागो जाए जन जीवन चले यह गीत भी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे थे।

0: लाठी चार्ज से फणीन्द्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन गुरु ठाकुर, अरविंद बाबू, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ दत्त कोई भी नहीं बच सका। सबका शरीर लहू लुहान हो गया। पुलिस अधिकारी कैंप खुद लाठी चार्ज में सबसे आगे था। कृष्ण कुमार मित्र ने कैंप से कहा,
1: आप अपनी पुलिस को रोकिए, नहीं तो आपके सामने इससे भी कठिन चुनौतियां खड़ी होंगी। अपनी पुलिस को रोकना आपका कर्तव्य है।
0: कैंप ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया,
2: मेरा ड्यूटी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपके सलाह का जरूरत नहीं है।
0: पर कुल मिलाकर घटना की गंभीरता समझकर उन्होंने लाठी चार्ज बंद किया और आसमान में बस दो ही शब्दों की गूंज बार बार आती रही।

वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 31वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि

0: व्यक्तिगत तटस्थ रखा गया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: At 5.25%.
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखा और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से CAPF कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
4: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी CAPF में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में CAPF के जवान 2,00,000,000 से ज्यादा वृक्षों का

0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
1: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे। यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
2: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलार ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियाँ और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पर जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
3: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं।
4: लोकल फॉर भोकली है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो

0: जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री सुशील खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, साहिल धनवे की बोल।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी गंगा मैया तुहे पेरी चढ़ी बो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, चुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमय प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते हैं या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, बिहार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या कर रही हैं?
1: मैम मैं घर पे ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ, बच्चों के और महिलाओं के, सारी गारमेंट्स बनाती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से?
1: मैं सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रहे हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: मैम मिल जाता है। मैम आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: बरगढ़ जिला उड़ीसा से संत प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का कामकाज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ आकाशवाणी के, सभी केंद्रों के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ, पढ़ाई तो खत्म है, मेरे कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है, तो हाँ। उनकी याद में एक गाना सुनेंगे, उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं, मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा, ललिता जी इंदौर से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत।
0: बढ़िया।
1: और दिन में धूप में तो निकलना,
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो तब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उससे थोड़ा कम समय दे पाते हैं, 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को आता है 9 बजे। छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं क्या, अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
2: अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है।
2: अरे वाह, यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी, मैं अभी 2-3 महीने हुए।
2: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है? कड़क वाली की अच्छी वाली?
1: नहीं,
2: आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम, हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम हम रोज घूमने जाते हैं। मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
2: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत बहुत ही अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: मैम, अच्छा लगता है उनके साथ, और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर से बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़ा।
2: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की सास हैं।
1: बिल्कुल।
2: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तो कितनी प्यारी है, तो कितनी भोली है।
2: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी। तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: घर तो संभाल लेंगे घर में, तो सब मैंने सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ
0: जी। तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं?
1: तो सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, तो मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भूले भी संगीत सविता, भूले मिश्र गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, सुन किचन में चलता रहता, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये, संगीत में अगर रुचि है ना आपकी तो समझिए आपका जीवन बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ, फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है।
0: ये अच्छी चीज है।
1: और हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मेरे पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए गमलों में सबने।
0: अरे वाह।
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पिया जो जबलपुर का है
0: जी,
1: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियां, इतने पौधे में पेड़ लगातार फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो हमारी हमारी जीवन देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना सुनूंगी जादू साइड खान का, नाचू तू बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाती हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सैगम, अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: अच्छा गाना सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्चे को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपका बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओह, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती, पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपनी, मतलब आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: सारी सही कर दे, डांस म्यूजिक तो ऐसी
0: जी, एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत
0: जी। तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हाँ जी, कौन बोल रहा है?
1: जी, मैं रत्ना बोल रही हूँ, रत्ना सिन्हा।
0: अच्छा, रत्ना जी बोल रही हैं। कहाँ से?
1: बाराबंकी से
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं ऐसे तो हाउस वाइफ हूँ,
0: जी
1: मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है।
0: जी और वैसे तो हाउसवाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउसवाइफ है क्योंकि हाउसवाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है
1: बिल्कुल बिना रुके बिना थके। जी
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके ऊपर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए
0: बिल्कुल।
1: जो है
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है,
0: बहुत बढ़िया। तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से।
1: जी जी जी जी
0: तो बताइए जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी, बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है। मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा आपने लगा रखे हैं?
1: हाँ, लगा रखे हुए। और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से वो दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है।
1: और साथ चिड़ियों की चहचहाट सुबह सुबह बहुत अच्छी है।
0: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती है, अपनी खुशियाँ देती है ना।
1: बिल्कुल आते हैं, सब खेलती हैं,
0: जब वो चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं।
1: जी जी जी।
0: तो आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
0: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाती हैं आपको ये आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी। तो आप बताइए, पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निकोत है। मैं
0: तो आप कहाँ से हैं?
1: चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बरोड़ा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम।
0: अच्छा,
1: मैं रहती हूँ दृष्टिहीन हूँ। मैं
0: तो

0: बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: मुझे जाकर सुनने का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ओडिशा गरम गंजाम जिला से बोल रही हूँ
0: जी। आप

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं उड़ीसा गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियाँ हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी तो बताइए, आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है? तो
1: मुझे सिलाई आती है, तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या है ना, हम उसको पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: ये हो रही है कि आज सखी सही लेकर मेरी फोन लगी। तो June 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, June 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के June 4 में है।
0: अच्छा,
1: तो बर्थडे के गीत सुनाई दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। तो आप उन्हें बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तो जो सुजाता फिल्म का गीत है ना,
0: सुजाता का कौन सा? अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको, पसंद करिए ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूँ बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई है शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है, और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती है तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कह कर गई है पता है? कह रही थी जो हुकुम, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा, और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर, कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है, और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा। मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है। सबसे पहले मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी, फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ, और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया।

कल्पना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा। सासु जी

कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने, क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे, इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो, नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती है? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो, तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती है। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती है, पलकों पर बिठाती है उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है, प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है। अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था, बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने

गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया? आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना? संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है? संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ? आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में? संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थी, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर

मैंने ऐसा क्या किया है? खैर, अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी। अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं, जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना, जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना, माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना, तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी। मैंने कहा तो था तुमसे, माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी, आप इतनी सुबह? हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो, तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है, तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठी गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी, वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहे और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी, इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी, कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेटकर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी, तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी, बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी, वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी, आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ। आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना, अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी, ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों?

और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है, मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने के

मामा आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

लंबी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, चुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए,
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे। असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सूरत में विकास परियोजनाओं से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सूरत के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केम छो बदा अने आपलो हुरत मजा माने तू शू लई आयो जो भाई धन्यवाद दोस्त सरस में जानू चित्र बनाई देते हैं जरा एसपी जना लोको आप भाई के भेंट आप मांगे थे।
0: अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगा।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: पेशे फिल्म संगीत और पहला गीत सुरेश वाडेकर और हरिहरन की आवाजों में। फिल्म का नाम है माचिस।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत जावेद अली की आवाज में, फिल्म का नाम था डंकी। आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अगला गीत है शंकर महादेवन और साथी कलाकारों की आवाजों में। फिल्म का नाम है मिशन कश्मीर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अपेश स्पॉन्सर्ड माफ कीजिए अपेश स्पॉन्सर्ड

नमस्कार दोस्तों, लम्हे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और आरजे चेतन। और आज हम एक ऐसे विषय की खोज कर रहे हैं जो हमारे सामाजिक जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है, मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव। तो अपना पसंदीदा चाय का कप ले, एक आरामदायक जगह ढूंढे और आइए साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण बातचीत को जारी रखें। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया ने खुद को हमारे रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में बुना है, हमें उन तरीकों से जोड़ा है जिनके बारे में हम कुछ समय पहले सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन आइए वास्तविक बने, विस्तार से जानते हैं कि सोशल मीडिया हमें कैसे प्रभावित करता है। हमारे द्वारा की जाने वाली निरंतर तुलनाओं से लेकर सत्यपान प्राप्त करने में इसकी भूमिका तक, तो इस डिजिटल क्षेत्र और हमारे दिल और दिमाग पर इसके प्रभाव की गहरी जानकारी के लिए तैयार हो जाइए। सोशल मीडिया में वह चीज है जहां लोग अपने जीवन की सर्वोत्तम हिस्सा है, जीत, ऊंचाइयां, चमकदार क्षण प्रदर्शित करता है। और क्या ये एक हाईलाइट रील में एक झलक देखने जैसा है? समस्या यह है कि हमारी रोजमर्रा की वास्तविकता की तुलना इन चित्र परिपूर्ण स्निपेट से करना आसान नहीं है। इससे पहले कि हम ये जाने, हम खुद को अच्छा न मानने और खुद पर संदेह करने के चक्र में फंस गए हैं। इस तुलना खेल को सुलझाए और देखें कि हमारे दिमाग के साथ कैसे खिलवाड़ करता है। अब दोस्तों, ये एक बहुत ही सामान्य बात है, हम हमेशा सोशल मीडिया पर दूसरों के मुकाबले अपने जीवन को आकार दे रहे हैं और ईमानदारी से कहे तो यह हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ है। लेकिन ये कोई चिंता नहीं है, हम यह केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं है, हम कुछ समाधान भी खोज रहे हैं। दोस्तों, हम निश्चित रूप से इस कंपैरिजन गेम में फंसे हुए हैं, इस गेम से हमें बाहर निकलना है। अब आपके चमकने का समय आ गया है, टाइम टू राइज एंड शाइन। हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, सोशल मीडिया रोलर स्केटर ने आपके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित किया है। अपने विचार और अनुभव हमें कॉल या हमें एक ईमेल भेजें। आपके शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं जो ऐसे ही महसूस कर रहा है, तो आइए मिलकर इस डिजिटल भूल भुलैये से पार पाए। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। अब माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा गियर बदलते हुए आइए वास्तव में सोशल मीडिया पर संपूर्ण सत्यापन दृश्य को समझें। क्या आप जानते हैं लाइक, कमेंट और शेयर की लगातार तलाश यह पीठ पर बाहरी थपथपाहट जैसे है, जैसे हम सभी चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ वास्तव में कठिन क्षण है। क्या होता है जब उन पसंदों की आपूर्ति कम हो जाती है या जब बहुत ही अच्छी नई टिप्पणियां सकारात्मक टिप्पणियों से अधिक होने लगती है? खैर, सावधान रहे क्योंकि हमारे आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति पर इसका असर काफी गहरा हो सकता है। आइए इस सत्यापन पहेली को खोले और देखें कि ये हमारे मानसिक कल्याण की बड़ी तस्वीर में कैसी भूमिका निभाती है। दोस्तों, ये स्वाभाविक है, मान्यता की चाहत पूरी तरह से मानवीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात है, उस गर्म धुंधले एहसास के लिए केवल बाहरी श्रोताओं पर निर्भर न रहना अति महत्वपूर्ण है। हम सोशल मीडिया के साथ एक स्वस्थ माहौल बनाने के तरीकों की खोज कर रहे हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भीतर से उस मान्यता को कैसे प्राप्त करें, ये एक मजबूती नींव तैयार करने जैसे है। दोस्तों, यह सोचने के लिए पहेली का एक और टुकड़ा है। सोशल मीडिया सामग्री की सावधानी पूर्वक बनाई गई दुनिया, वहाँ बहुत से लोग डिजिटल कलाकारों की तरह हैं, जो अपने जीवन के लगभग पूर्ण संस्करण को प्रस्तुत करने के लिए अपने पोस्ट को सावधानी पूर्वक चुनते हैं

और फिल्टर करते हैं। ऐसे लगता है मानो वो इस आदर्श चित्र को चित्रित कर रहे हैं। शिकार, ये पॉलिश की गई वास्तविकता हमारे दिमाग में गड़बड़ कर सकती है। जो सामान्य या प्राप्त करने योग्य मानी जाती है उसके बारे में एक प्रकार की विकृत दृष्टिकोण बन सकती है। ये एक डोमिनोस इफेक्ट की तरह है। ये अवास्तविक उम्मीद सेटिंग गेम वास्तव में हमारे मानसिक कल्याण में बाउंसर फेंक सकता है। आइए इस निर्मित वास्तविकता को उजागर करें और देखें कि ये दुनिया के बारे में हमारी धारणा को कैसे प्रभावित करती है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। फ्रेंड्स, आइए गियर चेंज करें और गेम चेंजिंग रणनीतियों पर जूम करें। हम यह बताने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया के साथ अपने रिश्ते में चीजों को कैसे सकारात्मक और संतुलित रखा जा सकता है। तो ये कुछ व्यावहारिक सुझाव आपके लिए आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए एक महत्वपूर्ण कदम से शुरुआत करें। सीमाएं निर्धारित करना, ये डिजिटल रेत में एक रेखा खींचने जैसा है। अपने सोशल मीडिया रोमांच के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें और अपने घर के कुछ तकनीकी मुक्त क्षेत्र घोषित करके एक गेम प्लान बनाएं। जब आप जानबूझकर यह स्थान और समय बनाते हैं तो यह आपके सोशल मीडिया के उपयोग पर लगभग वापस लाने जैसा है। इस तरह आप 24/7 इसकी दया पर निर्भर नहीं है और ये मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को नियंत्रण में रखने के लिए चमत्कार कर सकता है। आइए अपने डिजिटल जीवन को संतुलित करने की कला में महारत हासिल करें। तो दोस्तों, यहाँ एक विचार है, क्या आपने कभी अपनी सोशल मीडिया की आदत को थोड़ी राहत देना, विराम देने पर विचार किया? इसके बारे में सोचा? एक साप्ताहिक सोशल मीडिया डिटॉक्स दिवस और एक क्षण के लिए अंतहीन स्क्रोल पर विराम जैसे, जो आपको यहाँ और अभी में पूरी तरह से उपस्थित होने की अनुमति देता है। दैट मीन्स यू विल बी हियर एंड नाउ इन द मोमेंट। ये रणनीति अद्भुत काम करती है। डिजिटल चर्चा से अलग होने के लिए एक दिन समर्पित करना एक मानसिक रीसेट बटन की तरह हो सकता है। ये आपके लिए मानसिक ताजगी का टिकट है और स्क्रीन से परे की दुनिया का आनंद लेने का मौका है। तो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए डिजिटल डिटॉक्स के अपने स्वयं के दिन को निर्धारित करने के बारे में क्या ख्याल है? चीजों को संतुलित रखने की ये एक शानदार रणनीति है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ध्यान में रखें, सोशल मीडिया एक उपकरण है और किसी भी उपकरण की तरह इसका प्रभाव भी हमारे हाथों में है। चाहे वो उन महत्वपूर्ण सीमाओं को निर्धारित करना हो, एक सकारात्मक ऑनलाइन आश्रय बनना हो, या उन वास्तविक दुनिया कनेक्शन का निर्माण करना हो, हमारे पास लचीलेपन और भलाई के साथ इस डिजिटल जंगल को नेविगेट करने के लिए उपकरण है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। पेश अगला स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: TIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
0: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
0: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
0: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
0: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
0: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भोटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।

0: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी।
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 के हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करी।
4: खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
8: जी महाराज,
9: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे, क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज

0: दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
0: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
0: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
2: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
3: हुआ? मेरे साथ मिला, मुझे भी कैसे हो सकता है
2: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली, तुम
3: कैसे हो सकता है?
2: आया था
3: राजा, नकली ही ना तो सकता,
4: नकली कैसे आ गया?
2: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया,
3: राजा
2: सभी ने बोला कि नकली है।
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
0: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले महाराज।
1: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
0: धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जोहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
0: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।

0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
2: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं, चल चलू मैं, जल्दी सीख भी जाती हूँ।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे

घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है।

उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं, उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग FM 107.2 MHz ते ई आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र ते हुण थोड़ी देर च आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो हिंदी समाचार रिले किते जाणगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz ते आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਗੀਤ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ FM 107.2 MHz 'ਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:20 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में 2738 करोड़ रुपए की जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पिपली तथा

0: वानी चिड़ियाघर के नवीनीकरण और पक्षी दर्शन पर्यटन सर्किट के विकास की घोषणा की। हरियाणा में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस वर्ष 1,50,000 पौधे लगाए जाएंगे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के धनकोट में बायो रिमेडिएशन प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हरियाणा को बागवानी, कृषि व्यापार, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2,738 करोड़ रुपए की लागत से जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ तथा हरियाणा कृषि व्यापार एवं कोल्ड चेन केंद्र का शिलान्यास करने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा की धरती पर दो ऐसी ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है जो न केवल हमारे किसान की आय बदलेंगी बल्कि हरियाणा की कृषि की पूरी कहानी को नए सिरे से लिखने का ये काम करेंगे।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं न केवल किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी बल्कि हरियाणा की कृषि व्यवस्था को आधुनिक, टिकाऊ एवं लाभकारी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। दोनों ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया, साथ ही बागवानी विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। आज पंचकुला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण सरकार की प्राथमिकता है। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए राज्य में 23 नए परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। स्वच्छ एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 780 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल करेगी। मुख्यमंत्री ने पिपली तथा भिवानी चिड़ियाघर के नवीनीकरण की घोषणा भी की।
1: मैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के ऊपर कुछ घोषणाएं भी करना चाहूंगा। पिपली कुरुक्षेत्र में जो चिड़ियाघर है उसका नवीनीकरण किया जाएगा 70 करोड़ रुपए की लागत से और इसी प्रकार भिवानी में जो चिड़ियाघर है उसका भी नवीनीकरण किया जाएगा 25 करोड़ रुपए की लागत से। इसी प्रकार सरस्वती संरक्षण वन में प्रवासी पक्षियों के लाभ हेतु पक्षी विहार का निर्माण किया जाएगा जिसके ऊपर 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: कालेश्वर में जो राष्ट्रीय उद्यान में इको टूरिज्म तथा वन्य प्राणी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और उसके मूलभूत साथियों सुविधाओं के लिए उनके विकास के लिए मैं 10 करोड़ रुपए की आज यहां घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार पर्यटन की दृष्टि से स्थानीय प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु सुल्तानपुर जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, भिंडावास पक्षी अभयारण्य तथा कोटला झील 9 को शामिल करके पक्षी दर्शन पर्यटन सर्किट का विकास किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस वर्ष विभाग द्वारा कुल 1,50,00,000 पौधों का रोपण किया जाएगा।
1: इस वर्ष विभाग द्वारा हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,50,000 पौधे एक पेड़ माँ के नाम इस योजना के तहत लगाए जाएंगे जिसमें 50,00,000 पौधे वो मुफ्त वितरित किए जाएंगे। साथियों इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ। वन विभाग की सभी नर्सरियों में पौधे उगाने हेतु उपयोग में लाए गए साथियों प्लास्टिक बैग को बायो रिग्रेडेबल बैग से बदला जाएगा। पौधागिरी अभियान के तहत स्कूली बच्चों को भी 20,00,000 पौधे वितरित किए जाएंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर गुरुग्राम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में

0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने धनकोट में बायो रिमेडिएशन प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया।
1: श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से जैविक घटकों का उपयोग करके प्रदूषित पानी और कचरे का प्राकृतिक रूप से उपचार किया जाएगा। ये परियोजना गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक गेम चेंजर साबित होगी। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा सरकार के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
0: केंद्रीय मंत्री ने सेक्टर 102 में मटेरियल रिकवरी सुविधा और गुरुग्राम नगर निगम द्वारा शहर के 170 पार्कों तक शोधित अपशिष्ट जल पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शिलान्यास भी किया। इस दौरान श्री मनोहर लाल, राव नरबीर सिंह व स्थानीय नागरिकों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: विशिष्ट अतिथि राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और अभियानों को धरातल पर लागू किया जा रहा है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर आज पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब लोक भवन में वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व करते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वृक्षारोपण की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दौरान पारिस्थितिकीय, सजावटी एवं औषधीय महत्व रखने वाली विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। हरियाणा का 23वां जिला बनने के बाद आज हांसी में पहली बार शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने की। बैठक में रखे गए 10 मामलों में से 7 का मौके पर निपटारा किया गया। मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि रखे गए मामलों में कुछ पारिवारिक व घरेलू थे और एक दो विकास से संबंधित थे। हांसी जिले के विकास को लेकर उन्होंने कहा,
2: अभी हांसी में डेवलपमेंट के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वास्तव में जुड़े जिला हेडक्वार्टर पर जिस जिस तरीके की व्यवस्थाएं चाहिए उन व्यवस्थाओं पर विधायक आदरणीय विनोद बैना जी से लगे हुए हैं। सेक्टर कहाँ पे बनना, मर्दशील कहाँ पे बननी है, कोर्ट के लिए जगह, ये सब चीजों को लेके कॉम्प्लेक्स बन जाए, उस सारी व्यवस्था में विधायक जी ने अपनी प्रपोजल सरकार को दिए।
0: हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। आज नरवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चारों मंडलों के 225 बूथों के बूथ अध्यक्षों, बीएलओ 1 और बीएलए 2 की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, जबकि एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को नियम अनुसार हटाया जाना चाहिए।
3: पार्टियों की जिम्मेवारी बढ़ती है और सभी पार्टियां अपने अपने बीएलए 2 के माध्यम से, बूथ अध्यक्ष के माध्यम से, बीएलए 1 के माध्यम से वोटर सूची के शुद्धिकरण में लगे हुए हैं और सभी को प्रयास करना चाहिए कि जो एक्चुअल मतदाता है, जो जहां पर वोट पोल करेगा वहीं पर ही उसकी वोट हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है।
0: मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
1: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000,
0: ते बिजली दा बिल दे
1: हुन 0 रुपए की में दवा।
0: ओहो भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उसकी शॉपिंग करन चलिए।
1: जरूर, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना जुड़ा नहीं, रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है, हुण तुसीं जगजीवन सिंह तो

0: प्रादेशिक खबरां सुनो। सब तो पहला अज दियां खास खबरां। अज विश्व वातावरण दिवस मौके उपराष्ट्रपति अते प्रधानमंत्री वल्लों देशवासियों नूं वातावरण सुरक्षा, पायेदार जीवन शैली अते जैव विविधता की संभाल प्रति अपनी वचनबद्धता नूं मजबूत करने की अपील। पंजाब दे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने देशव्यापी मुहिम एक पेड़ मां के नाम तहत चंडीगढ़ विखे बूटे लगाने की मुहिम की अगवाई की। रासवा मैंबर संत बलवीर सिंह सीचेवाल ने जलंधर विच सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो सोधे हुए पानी नाल सिंचाई करन संबंधी प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। पंजाब राज महिला कमिशन ने लुधियाना विच नौ कुड़ियों के लापता होने की रिपोर्टों का अपने पद्धर से नोटिस लिया। पुलिस तो 8 जून तक सर्वे रिपोर्ट मंगी। सीबीआई की मोहाली अदालत ने कोरोना के बैंक घोटाले मामले में एक व्यक्ति को 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है। अमृतसर पठानकोट कौमी शाहरा से अज सवेरे वापरे एक सड़क हादसे में एक परिवार के 2 व्यक्तियों की मौत और 14 जख्मी। अज विश्व वातावरण दिवस है। यह दिन 1973 तो संयुक्त राष्ट्र वातावरण प्रोग्राम तहत धरती से जीवन बचाने बारे जागरूकता पैदा करने लिए हर साल 5 जून मनाया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने हरेक नागरिक को आने वाली पीढ़ियों लिए स्वच्छ, सेहतमंद और खुशहाल भविष्य बनाने लिए इकट्ठे होकर काम करने का सद्दा दिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वातावरण दिवस से राष्ट्र को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम वर्गियां पहलकदमियां ने हर साल लगभग 1,19,000 हैक्टेयर जंगलात कवर जोड़ने में अहम योगदान पाया है। केंद्रीय मंत्री जंगलात और जलवायु प्रबंधन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों को जलवायु और भविष्य लिए कुदरत तो प्रेरणा लेंदे रहने के अपने संकल्प को दोहराने की अपील की है। इधर अज पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब लोक भवन में बूटे लाने की मुहिम की अगवाई की। यह पहल देशव्यापी मुहिम एक पेड़ मां के नाम तहत की गई सी। इस मौके संबोधन करदे श्री कटारिया ने कहा कि वातावरण की सुरक्षा सांझी जिम्मेदारी है और उन्होंने नागरिकों खासकर नौजवान पीढ़ी को बूटे लगाने लिए संभाल नाल संबंधित सरगर्मियों में हिस्सेदारी का सद्दा दिता है। विश्व वातावरण दिवस के मौके पर श्री सीमा सुरक्षा बल 109वीं बटालियन ने माधोपुर में एक विशेष समागम का आयोजन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक ने मुख्य मेहमान वजों शिरकत की और बटालियन के अहाते में एक रुख लाया। समागम दौरान कैबिनेट मंत्री कटारू चक ने कहा,
1: वातावरण शुद्ध रहे ये मैं समझना भी हर भारतीय नागरिक की एक जिम्मेवारी हैगी है। सो मैनू बहुत अज खुशी महसूस हुई है कि असी अज माधोपुर विखे BSF की 109 बटालियन च आने का मौका मिले। इतने प्लांटेशन नू शुरुआत की गई है। सो BSF की इस बटालियन ने 5,000 बूटे लाने का टारगेट मिथ्या पूरे जिले के अंदर। सो तमाम लोगों को बेनती है कि आज का दिन कला एक सम्बोलिक नहीं है बल्कि जिले के अंदर वातावरण साफ रखने के लिए सानू कोशिशें जारी रखनी चाहिए, सानू जतन करने चाहिए।
0: पंजाब के विज्ञान टैक्नोलॉजी और वातावरण विभाग वालों अज पुष्पा गुजराल साइंस सिटी कपूरथला विखे विश्व वातावरण दिवस 2026 मनाने लिए राज पद्धरी समागम कराया गया। समागम के मुख्य मेहमान पद्म श्री रास मैंबर संत बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल ने समागम का उद्घाटन करदे सूबे में बूटे लगाने संबंधी जागरूकता मुहिम की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को बूटे वंडते हुए लगाने का इस नेक कार्य सब तो वध हिस्सा पाने की अपील की है। उन्होंने देसी प्रजातियों के रुख लगाने और वातावरण की सुरक्षा लिए प्लास्टिक की वरतों तो गुरेज करने का सद्दा दिता है। इस मौके उन्होंने सूबे में वातावरण, कुदरत और कुदरती स्रोतों की संभाल के खेत्र में महत्वपूर्ण योगदान पाने वाली संस्थावों को सम्मानित भी किया। इसी तरह फिरोजपुर में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर कंपलैक्स के वधीक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अमनदीप कौर वालों दफ्तर की ग्राउंड में रवायती रुखों के बूटे लाए गए। उधर श्री मुक्तसर साहब के जिला अते सैशन जज जसविंदर शिमर की अगवाई हेठ कचहरी कंपलैक्स विखे वातावरण दिवस मनाया गया। प्रसिद्ध वातावरण प्रेमी और रास मैंबर संत बलवीर सिंह सीचेवाल वालों विश्व वातावरण दिवस मौके स्थानक बस्ती पीरदादा के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो 25 MLD सोधे हुए पानी की वरतों करके नेड़े 4 पिंडां की खेतीबाड़ी जमीन की सिंचाई संबंधी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। इस मौके उन्होंने करतारपुर तो विधायक बलकार सिंह भी मौजूद सन। संत सीचेवाल ने अपने संबोधन दौरान धरती हेठले पानी की संभाल लई बदलवें सतह पानी आधारित सिंचाई पानी स्रोतों नूं विकसित करन अते नहरी पानी की सब तो वध वरतों करने की जोर दिती है। उन्होंने कहा है कि सोधे हुए पानी की वरतों ना सिर्फ सरकार के पानी संभाल मिशन के अनुसार है सगों इस सदका खाद की जरूरत घटन नाल किसानों नूं लाभ भी होगा। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNUJALANDHAR। पंजाब राज महिला कमिशन ने लुधियाना विच 9 कुड़ियां

0: हुणे तुसीं सरवण कर रहे सी प्रोग्राम अमृत बाणी आकाशवाणी दा चंडीगढ़ केंद्र है FM 107.2 MHz ते।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी।

0: जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। यूटी चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: ते हुण तां थोड़ी देर च तुसी सुनोगे प्रोग्राम जयमाला, जो विविध भारती दे मुंबई केंद्र तों रिले कीता जाएगा।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा स्नेहिल अभिवादन। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है शहीद। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी खान मस्तान और साथी राजा मेहदी अली खान की रचना है और गुलाम हैदर का संगीत।

यह आवाज थी किशोर कुमार की और फिल्म का नाम था अनोखी अदा। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है दो चोर। रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मुकेश की आवाज में हम आपको फिल्म मनचले का गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार आनंद बख्शी हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना। गीत को लिखा है असद भोपाली ने और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। ये फिल्म है ये गुलिस्ता हमारा।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। ये स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अभिमान। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सुम।

0: जी
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: किशोर कुमार और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है दाग, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: जयमाला कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत भारतीय सेना, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

श्रोताओं, हवा महल में आइए आज आपको सुनवाते हैं झलकी, जरा सी आंख लग गई, लेखक और निर्देशक गिरीन्द्र प्रसाद।

0: दुनिया में समस्याओं का क्या कहना, एक से बढ़कर एक होती हैं। फिर समस्याएं देश विदेश की अलग होती हैं, गांव और शहर की अलग होती हैं, परिवार की अलग होती हैं, व्यक्ति व्यक्ति की अलग होती हैं, यहां तक कि पति पत्नी की समस्याएं भी कुछ अलग ही होती हैं। तो इन्हीं समस्याओं की कुछ वानगी आपको पेश करता हूं। जी हाँ, इनसे मिलिए। आप एक ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी से परेशान हैं और बेचारे किस्मत को कोस रहे हैं।
1: हे भगवान, लगता है आज फिर सब्जी जल रही है। अभी अभी तो रसोई में थी, कहाँ चली गई? अब मैंने कहा, अरे भगवान कहाँ चली गई, देखो सब्जी जलकर खाक हो गई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ सोई है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, इस महंगाई में रोज कुछ न कुछ जला कर बर्बाद कर देती है। कभी सब्जी जल रही है तो कभी दाल, बा जाए ऐसी पत्नी से।
2: आ, क्या हो गया? क्यों जी, घर को मछली बाजार बना दिया है क्या?
1: लो और

0: सुनो, मैं ही घर को मछली बाजार बना रहा हूँ। अरे देवी जी, तुम्हारी सब्जी जलकर खाक हो गई, कहाँ चली गई थी?
1: मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं कहीं चली जाऊँ, दिन रात घर में कोल्हू की बैल की तरह चलती रहती।
0: हाँ हाँ, तुम ही तो एक अजूबा की पत्नी हो जो घर का काम करती हो, मैं ही बैठे बैठे मस्ती मारा करता हूँ।
1: पर जनाब, अभी आप तो घर में ही थे, फिर सब्जी जल कैसे गई?
0: चूल्हे पर चढ़ी थी इसलिए जल गई, और कैसे जलेगी?
1: अगर आप चीखने और चिल्लाने के बजाय जरा सब्जी ही उतार लेते तो आपकी शान नहीं बिगड़ जाती।
0: लो और सुनो, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। अपने तो पलंग पर लेटी थी और मैं बाथरूम से निकलकर रसोई में आकर सब्जी उतार लेता, क्यों?
1: आप तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं पलंग पर सोई रहती हूँ और घर का सारा काम आप ही तो कर देते हैं। ठीक है, मेरी तो किस्मत ही फूटी।
0: अरे किस्मत तो मेरी फूटी है श्रीमती जी, कि आज फिर मुझे जली सब्जी ही खानी पड़ेगी। हे भगवान,
1: क्या करूं जी, अब और सब्जी तो घर में है नहीं जो फिर से बना दूं। आपने खुद ही सब्जी जलाई है तो मैं क्या करूं?
0: हाँ, और सुनो, मैंने ही सब्जी जला दी, पर ये क्यों नहीं कहती कि मैं सो गई थी?
1: हाँ हाँ, मैं तो सोई ही रहती हूँ, हमेशा आप यही कहते हैं। अरे वो तो निगोरी जरा सी आंख लग गई थी।
2: देख लिया आपने, पत्नी बेचारी नींद से ही परेशान है, जब तब इनकी आंखें लग जाती हैं। आखिर बेचारी करे भी तो क्या, अपनी आदत से लाचार जो हैं, बेचारे पति को तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। खैर छोड़िए साहब, ये तो इनकी अपनी समस्या थी, पर ये तो सज्जन ट्रेन में बैठे हैं, ये भी किसी से कम नहीं है। जरा सा मौका मिला कि खर्राटे नेले लग जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि कहाँ जाना है इन्हें। भाई साहब, जब आप सफर में निकलते हैं तो इतना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा कि कौन सी जगह उतरनी है, अगर नहीं तो आप भी इन्हीं की तरह ही परेशान होंगे।
3: ये कौन सा स्टेशन है भाई साहब?
4: अभी दिल्ली दूर है भाई साहब, इतनी नींद से सोइए।
3: अरे नहीं भाई साहब, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे तो कानपुर ही उतरना है।
4: कानपुर? कानपुर तो चार स्टेशन पीछे ही छूट चुका है, अब आप अगले स्टेशन पर उतर जाइए।
3: पर कानपुर छूट कैसे सकता है, ट्रेन तो इतनी फास्ट नहीं है।
4: ट्रेन तो फास्ट नहीं है, पर आपकी नींद तो बहुत फास्ट है जनाब।
3: वाह साहब, आप मजाक करते हैं, यह तो आपसे हुआ नहीं कि मुझे कानपुर में ही जगह दें और अभी हंस रहे हैं।
4: हंसू नहीं तो क्या करूं, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ा ही था कि साहब को कानपुर में उतरना है तो कानपुर पर उतार दूं।
3: छोड़िए साहब, आप जैसों के मैं मुंह नहीं लगता।
4: खबरदार,
3: तमीज ही नहीं है।
4: खबरदार, जो तमीज की बात कही, यदि खुद तमीज नहीं है तो दूसरे को क्या तमीज सिखाएगा?
3: देखो मैं तुमसे मुंह नहीं लगता, चुप हो जाओ वरना मैं सबक सिखा दूंगा।
4: तुम्हारी क्या मजाक, तुम मुझे सबक सिखाओगे? तुम आया था झापड़ दो,
3: झापड़ मारोगे?
5: आप लोग आपस में झगड़ते ही रहेंगे, आप भी उतरेंगे और आगे जाने का इरादा है क्या?
3: हाँ साहब, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो दूसरों की परेशानी में मजाक उड़ाते हैं।
4: फिर तुम जवान संभाल कर बातें करो, नहीं तो ट्रेन से फेंक दूंगा।
5: छोड़िए साहब, आप ही चुप हो जाइए, इन्हें दूसरों से उलझने के पहले अपनी गलती खुद ही मान लेनी।
3: वाह साहब, आप भी खूब बोलते हैं, मेरी क्या गलती है, जरा सी आंख ही तो लग गई।
2: जी हाँ, देख लिया आपने, कैसे कैसे लोग होते हैं, गलती खुद करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। ऐसे लोग खुद तो परेशान होते ही हैं, दूसरों को भी परेशानी में डाल देते हैं। बेचारे की हालत तो देख ही लिया आपने, सोने के चक्कर में कानपुर से चार स्टेशन आगे निकल गई है बेचारे। साथ के यात्रियों से तो झगड़ा हुआ ही, अब स्टेशन पर भी टिकट के अधिक पैसे लगेंगे इन्हें, और वापस तो टिकट कटाकर आएंगे ही। सोने वालों की कहानी भी बड़ी निराली होती है भाई साहब, ट्रेन में सोना या सभा या सिनेमा भवनों में झपकी ले लेना तो अक्सर होता रहता है, पर दफ्तर में सोने की बात आपने कभी भी सुनी नहीं होगी। तो लीजिए जनाब, दफ्तर के ये बड़े बाबू हैं, जरा आप इनसे मिलिए।
6: बड़ा बाबू नमस्कार। मैंने कहा बड़ा बाबू नमस्कार, तबीयत तो आपकी ठीक है ना?
7: क्या
6: तबीयत तो आपकी ठीक है ना बड़ा बाबू?
7: आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप सेल ले लीजिए।
6: बड़ा बाबू, मैं कॉन्ट्रैक्टर चंद्र प्रकाश हूँ, मेरे बिल का क्या हुआ?
7: आपका बिल

0: मैंने बड़ा साहब को भेज दिया।
1: पर मेरा बिल बड़ा साहब के पास क्यों भेज दिया? वहाँ से तो पास होकर परसों ही आ गया था, आज तो चेक देने की बात है ना।
0: हाँ, बड़ा साहब ही देंगे। मेरे पास चेक कहाँ है भाई?
1: कमाल का दफ्तर है, दिन में भी लोग खर्राटे मारते हैं। ठीक है, चलता हूँ मैं बड़ा साहब से ही शिकायत करता हूँ। बाहर दफ्तर।
2: क्या कहा बड़ा बाबू ने? चेक मेरे पास है, नहीं तो मेरे पास तो कोई कागज वागज नहीं है। कल ही मैंने आपका चेक साइन करके बड़ा बाबू के पास भिजवा दिया था।
1: पर सर, वे तो कह रहे हैं आप ही के पास चेक है।
2: क्या कहा? मैंने कहा ना आपसे मेरे पास नहीं है।
1: पर सर, वे तो सो रहे हैं दफ्तर में।
2: व्हाट? क्या कहा? दफ्तर में आज भी सो रहे हैं? वे अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। चलिए चलिए, मैं खुद देखता हूँ। आइए। बड़ा बाबू, चंद्रप्रकाश जी का चेक इनको दे दीजिए।
0: हाँ तो दिया साहब, आपसे कि यहाँ कोई चेक वेक नहीं है।
2: आप तो होश में है बड़ा बाबू, मैंने कल ही चेक साइन करके आपके पास भेज दिया था।
0: सर, आप?
2: हाँ हाँ बड़ा बाबू, मैं। आप अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। आज से आप घर जाकर चैन से सोइए, मैं अभी आपको सस्पेंड करता हूँ।
3: सॉरी सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए सर, फिर आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
2: नो, आई विल डिसमिस यू। आप हमेशा यही कहते हैं लेकिन दफ्तर में सोने से बाज नहीं आते। दिस इज वेरी बैड बड़ा बाबू।
3: सर, मैं सोया नहीं था सर।
2: व्हाट? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ।
3: नहीं सर, वो तो जरा सी आंख लग गई।
4: ये थे दफ्तर के बड़ा बाबू। आखिर ये बेचारे करे भी तो क्या। छोड़िए साहब, हमें क्या मतलब उनसे, ये हेडेक तो उनके बॉस का है। फिर ये तो कुछ भी बात नहीं, अब जो नमूना आपको मैं पेश करने जा रहा हूँ ये भी कमाल ही है कमाल। अगर इंसान जाग रहा हो तो आंखें लग भी सकती हैं, पर सोए हुए की आंखें खुली रहे और वो चलता भी रहे तो बात कुछ बनती नहीं। पर आप खुद ही देख लीजिए, ये सज्जन अपने ही घर में कैसे फंस गए हैं।
5: जी सुनते हैं? ओहो, सुनिए ना। अरे अभी तो सोए थे, कहाँ चले गए? ओह, बाथरूम की बत्ती चल रही है। आप बाथरूम में कब से बैठे हैं जी? अरे रे, वो देखिए दरवाजा खुला है। हाँ, अरे अरे महावीर, लगता है चोर भागा जा रहा है। देखो चोर, पकड़ो।
6: जय बजरंग बली के, जय बजरंगी बली के। कहाँ मालकिन, किधर चोर है? अरे आप चुप रही मालकिन, चुप रही। अभी उस बदमाश को हम पकड़ के लाते हैं।
5: पकड़ो, जाओ जल्दी जल्दी। अरे चोर पकड़ लिया।
6: आप क्या बताओ बच्चों, मेरे ही घर में चोरी करने के लिए सुझा था, तुझे मालूम नहीं? मेरा नाम बजरंगबली। तेरी गर्दन तोड़ दूँ। हाँ, अरे गर्दन तोड़ दूँ
7: भाई।
6: अरे तो तुझे प्यार करूँ, तू है कौन है तू? और कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, तो क्या तू मेरा मालिक है क्या?
5: अरे अरे सुनते हैं जी। ओहो सुनिए तो, बाथरूम से निकले तो बाहर देखिए चोरी हो रही है घर में। आप सोए हुए हैं, पानी क्या करें, कब तक क्या कीजिएगा? अजी उठिए उठिए उठिए, महावीर पकड़ो।
6: ये लीजिए मालकिन।
5: हाँ, बड़ा आया है चोरी करने के लिए।
6: पकड़ा गया। हम मालकिन भी कहता क्या था, हमारी सुनी ना। कहता था मुझे चोर दो,
5: अभी
6: मैं चोर नहीं हूँ। लगता है कि तू मेरा मालिक है क्या?
7: अरे चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ।
5: बड़ा आया है गाली देने वाला, बड़ा गाली देने वाला। ला महावीरा, जब झाड़ू दे तो
6: अभी
7: मालिक हूँ। अरे चोर नहीं हूँ
6: मालकिन, मालकिन मैं बत्ती जला के देखते हैं।
5: जी, ये तो आप ही हैं।
6: मालिक है,
5: आप तो हमारे मालिक हैं जी।
6: हालत खराब।

0: बुआ महावीर तुझे अपने मालिक को मारते हुए राम भजन नहीं आई, तेरा हाथ नहीं गल गया रे महावीर राम। हे भगवान तू अभी निकल जा मेरे घर से, अभी चला जा।
1: मालकिन मालकिन आप ही ने तो कहा था कि घर में चोर आया है, मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन।
0: चोट आई
1: पर क्यों बिगड़ती हो रामा, गलती तो मेरी थी।
0: चलिए चलिए
1: नींद में ही बाहर निकल गया
2: बजरंग बली।
0: ये लीजिए पानी पी लीजिए
1: बजरंग बली, बजरंग बली।
0: हे भगवान आप ही धन्य हैं, मैं तो सोच रही थी कि बाथरूम में आपकी आँख है।
3: जी हाँ, तो देखा आपने कैसे कैसे नमूने हैं मेरे पास, सोने वालों की कमी नहीं है।
4: जरा सी आंख लग गई, गिरिंद्र प्रसाद की लिखी और निर्देशित झलकी अभी आप सुन रहे थे। ये झलकी हमारे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

ये था फिल्म अशोका का गाना, आवाजी अभिजीत, चित्रा के एस और साथियों की। गीतकार थे गुलजार साहब और संगीतकार थे अनु मलिक।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें थी, फिल्म का नाम था रिफ्यूजी।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर, मोहम्मद सईद, फरीब साबरी और उनके हमनवा, फिल्म का नाम है हिना, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। यह है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: आकाशवाणी दा चंडीगढ़ केंद्र है एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज ते ते हुण थोड़ी देर च आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो हिंदी समाचार रिले कीते जाणगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर

संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि BSF जहां जहां है, SSB जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

0: प्रतिपालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और

0: परिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें। फिल्म का नाम है कोहिनूर।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म काला बाजार से लिया है। गायक स्वर मोहम्मद रफी का है, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत SD बर्मन का है।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद और स्वर मोहम्मद रफी का, शब्दकार शकील बदायूनी हैं और संगीतकार रवि हैं।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। फिल्म अनाड़ी का दो गाने सुनिए। स्वर लता मंगेशकर और मुकेश के, गीतकार हजरत जयपुरी हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था अनाड़ी। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जिद्दी का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत में डाला है खेमचंद प्रकाश ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जिद्दी। इसे प्रेम धवन ने लिखा था और धुन बनाई थी खेमचंद प्रकाश ने। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाजें। फिल्म का नाम है जीने की राह। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका जीवन संगीत।

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी

0: माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन।
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।
2: गुम

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थी आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

के बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं,

संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

और फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म नीरजा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी नीरजा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने नीरजा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव

बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

पूजा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीर दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। अमलतास की झालरों पर जब उतरती है चांदनी, हवा के झोंके कुछ और मुखर हो जाते हैं। ताल झूमता है, कुमुदनी हुलस जाती है, तब अचानक होठों पर कोई अधूरी सी बात चली आती है।

जोड़ता है टूटे हुए तार को, तो कहीं दिल मचलता है बस एक इकरार को। कभी तो मिलता नहीं जरा सा करार, और कहीं छाया है नाजुक एहसासों का खुमार।

राज हैं ऐसे जो सरेआम बताए नहीं जाते, ये नखमे हैं दिल के जो हर सांस पर गाए नहीं जाते। इन्हें तो बस वही गा सकता है जिसके दिल में बेपनाह मोहब्बत हो और आवाज हो ऐसी पवित्र कि लगे स्वाति की कोई बूंद हो।

फासले कदमों के नहीं हो, बीच में कई बरस खड़े हो, रातों में जागी हुई आंखें हो, होठों पर खामोश हुए नगमे हो, तो भी कोई सुन ले तो ये नगमे फिर गा सकते हैं और उन आंखों में उतर सकती है नींद।

टप टप कर स्मृतियों की बरसात होती है जब कभी, रात के आंगन का कोना कोना भीग जाता है, अंधेरे के सितार पर गूंज उठता है एक उदास राग, और चांद अपने ख्यालों में डूब जाता है।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਗੀਤ ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਸਾਂਝ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੀਤ ਇਸ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री

0: सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले रात दे 11:05 ते 7 सैकेंड होए ने। हुण साडी अज दी सभा इत्थे ही खत्म हुंदी है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडे नाल फेर मुलाकात होवेगी। उदों तक दे लई इजाजत दिओ। जय हिंद।